देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय है।

0: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था, और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है।
1: लेट मी से दैट द विजिट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एज इंडीड ऑफ अदर डिग्निटरीज आर असेस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन ऑर्डर टू अकॉर्ड पॉलिटिकल क्लियरेंस। द प्रोग्राम प्रपोज्ड in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case that was not so in respect of the United States and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.

0: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था, और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: इंटरनेट पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं उतने प्रोडक्ट्स हैं, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, एंड दैट ट्राइंग इज व्हाट रियली किल्स योर स्किन समटाइम. कोई टूथपेस्ट लगा रहा है, कोई कैस्टर ऑयल लगा रहा है, कोई पिंपल टेप्स आजकल आ गए हैं वो लगा रहे हैं.
1: आजकल ऐसे कोई लिम्फैटिक ड्रेनेज वाला भी ब्रश आया जिससे लोग अपने आप को खरोद रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे बाथरूम फ्लोर और पता नहीं क्या. डॉक्टर तो कुछ खाती नहीं है, ये शुगर भी नहीं लेती, इसने डेयरी भी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल घर का खाना खाती, लेकिन इसको पिंपल ठीक नहीं हो रहे. क्या सबके हार्मोन गड़ बने जिनको पिंपल हो रहे हैं? नहीं. क्या सबकी लाइफस्टाइल खराब है? नहीं. एक्ने प्रोन का मतलब ये नहीं कि एक्ने होगा ही होगा. आप जब मुझे 12 साल की उम्र में देखते, मुझे बहुत एक्ने था. 15 साल पे आई वाज गिवन माय फर्स्ट ओरल मेडिसिन बिकॉज इट वाज सो मच कि लगाने की ट्यूब्स नहीं ठीक कर रही थी.
0: How do you identify what pimple do you have?
1: अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो तीन टाइप के पिंपल हैं. ये एक ताला चाबी की तरह है. इट्स नॉट द ओनली कल्प्रिट बट इट्स अ बिग कल्प्रिट.
0: तो ये एक ऐसा ताला है जिसे नहीं खुलना चाहिए.
1: आपकी स्किन सेल्स है ना ब्रिक्स की तरह, उनके बीच में सीमेंट है जहाँ पे थोड़ा ये ऑयल एक रोल प्ले करता है सीमेंट में. आपने वो सीमेंट ही हटा दी तो जिसे हम कहते हैं बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया. बॉडी को लगेगा ड्राई स्किन हो रही है मेरी और ऑयल बनाते हैं.
0: Why you get acne has got little to do with what you're applying, but more to do with what you're eating.
1: हमारे पास दो चीजों का प्रूफ है, एक है शुगर और एक है.
0: What does that mean for all the supplements?
1: प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि अगर आपको मैंने बता दिया तो आपने एक हफ्ते यूज किया फिर आपने छोड़ दिया और आपको आ गया रेजिस्टेंस, क्योंकि एंटीबायोटिक है और रिसर्च इतना तेज नहीं होता जितनी तेज आपके पिंपल्स बढ़ते हैं.
0: I didn't know this is an antibiotic. That's crazy.
1: I have had patients where they have decided to abort their children.
0: No.
1: Because just because they didn't know and they've been on tretinoin. Doctor, sorry, हमने लगा लिया, अब हम क्या करें? Retinol is not safe in pregnancy.
0: Wow. But that's how dangerous it is.
1: In the US, it is compulsory to sign a consent form.
0: India mein, I can order it on Blinkit. Hello and welcome. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. This is Doctor versus Internet, and today on this episode, we are going to solve all your problems related to acne, to pimple, to what your skin really feels like. And no, this is not just for women. This is not just for men who care about grooming, but this is for everybody to get a basic understanding of what is right and wrong and how skin, the largest organ in your body, responds to different things like response to your hormones, like response to your gut as well. But before I go anywhere in this podcast, by the way, a lot of you are watching our videos but not subscribing. So here's a quick reminder to go click that subscribe button and also follow us on other socials to ensure that hum jo videos bana rahe hain wo aapki timeline tak aapke algo mein feed karke aate jaye bar bar. So having said that, let's open this conversation. And joining me today for this is Dr. Jushya Bhatia Sareen. She's an MBBS MD. She's got her diploma in allergy from Germany. She's also gone to London to get her MRCP. And she's a second generation doormat. So, khoon mein hai. Okay. Right, Jushya? Welcome to Doctor versus Internet. And I hope this will be a very clean and clear conversation. Can I call it that?
1: Absolutely.
0: Dr. Jushya, I think let's start with understanding the basics. A lot of people today don't know the difference between an acne and a pimple. Ye basic knowledge bhi nahi hai. To kya ek asaan tarika hai logo ko samjhane ka ki dono mein farak kya hai?
1: Of course. And before I start, आपके पॉडकास्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट.
0: जी.
1: तो जब मैं यह समझाने वाली हूँ आपको पिंपल और एक्ने, ये टर्म्स एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है इंटरनेट की वजह से. सो इट्स अ वेरी वैलिड नेम, बट आई वांट टू टेल पीपल दैट जो कंज्यूमर्स हैं वो इंटरनेट नहीं बना रहे, वो सिर्फ कंज्यूमर पार्ट है. इंटरनेट बना रहे वो हाउसेज जो अपना प्रोडक्ट देना चाहते हैं आपको एक स्टोरी बनाकर. हम उनके अगेंस्ट हैं. वी वॉन्ट बी विथ पीपल. सो you know, it is doctor with people versus internet.
0: But you're right, because internet pe jitni problems hain utne products hain. I remember when I was a teenager, any internet ki pehle ki baat hai, every time, every weekend, there would be a new ad product for a new shampoo and you thought, ye try karte hain, wo try karte hain. And that trying is what, you know, really kills your skin sometime.
1: True.
0: So that's why I'm saying this is going to be educational, because we'll come down to the basics. We'll understand essential kya hai aur kya nahi try karna hai.
1: Right.
0: Yeah.
1: Pimple jo hota hai, pimple kisi ko bhi ho sakta hai. Ekad pimple life mein kisi ko bhi ho sakta hai. Jo ek dana dikhta hai aapko skin pe, jaise mere forehead pe hai, wo ek pimple hai. Lekin agar mujhe baar baar pimple hote hain, mera genetics ki wajah se, मेरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, मेरी स्किन पे इन्फ्लेमेशन चल रहा है, मेरा ऑयल कितना निकलता है, मेरे हॉर्मोन्स मेरे ऑयल के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, ये फेज अगर बार बार चल रहा है उसे हम एक बीमारी कहते हैं. दैट इज अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड एक्ने वल्गैरिस. वल्गैरिस का मतलब होता है कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन. एक्ने एक्चुअली आता है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम पहले कहते थे एक्मे, मैनी मैनी मैनी ईयर्स अगो, यू नो, जो पुरानी बुक्स में लिखा गया है. अब एक्मे का मतलब होता था एक पॉइंट या फिर एक पीक, तो जो भी पीक दिखती थी वो कहते थे एक्मे. अब वो ट्रांसलेट होते होते लैटिन में फिर इंग्लिश में एक्ने बन गया.
0: रिमाइंड्स मी ऑफ स्किन केयर एंड अ कॉस्मेटिक ब्रांड, बट
1: ऑल ऑफ अस कैन रिलेट टू इट.
0: ऑल ऑफ अस नो व्हिच वन.
1: या सो जिसने सफर किया एक्ने से वो कभी कभी कुछ कुछ ब्रांड्स को नहीं भूल सकते. तो पिंपल एक दाना है, एक्ने है जब आपको बार बार पिंपल हो रहा है तो आप कहोगे मुझे एक्ने वल्गैरिस है. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक होती है एक्ने प्रोन स्किन, कि इनकी स्किन पे बार बार पिंपल होते हैं, और एक होती है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे उसे अफेक्ट कर रही है. मतलब यू आर बोर्न विद अ स्किन दैट कैन मेक यू एक्ने प्रोन और नॉट एक्ने प्रोन. प्रोन मतलब होने की संभावना है. अगर मेरी एक्ने प्रोन स्किन है और उसके बाद मेरे हॉर्मोन्स भी गड़बड़ काम कर रहे हैं, मेरी स्किन पे हॉर्मोन्स गड़बड़ नहीं है, वो स्किन पे गड़बड़ काम कर रहे हैं, मैं खाती भी बहुत बुरा हूँ, मैं शुगर भी बहुत ज्यादा लेती हूँ, मैं डेयरी भी बहुत ज्यादा लेती हूँ, मैं अपने मेरे सारे ट्रिगर्स हैं, तब मुझे पिंपल होंगे. सो लॉट ऑफ पीपल हैव एक्ने प्रोन स्किन, लेकिन वो अच्छा मेंटेन कर लेता है, उनको दिखते ही नहीं कि अच्छा आपकी स्किन पे कभी पिंपल थे, ऐसा लगता नहीं है, बट हाँ थे, एक्ने प्रोन है स्किन.
0: तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है कि नहीं है?
1: ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन एक्ने प्रोन है कि नहीं. अब आप ये समझिए कि एक्ने क्यों टीनेजर्स में स्टार्ट होता है. आप बहुत कॉमन सेंस की बात है, सबको पता होगा हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं इसीलिए होते हैं, बट हॉर्मोन कर क्या रहे हैं? क्या हॉर्मोन गड़बड़ है? क्या सबके हॉर्मोन गड़बड़ हैं जिनको पिंपल हो रहे हैं? नहीं. क्या सबकी लाइफस्टाइल खराब है? नहीं. पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं डॉक्टर हम इतना क्लीन खाते हैं, उनके पेरेंट्स भी शॉक होते हैं कि डॉक्टर ये तो कुछ खाती नहीं है, ये शुगर भी नहीं लेती, इसने डेयरी भी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल घर का खाना खाती, लेकिन इसको पिंपल ठीक नहीं हो रहे. तो ऐसा क्यों होता है? आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि आपके हॉर्मोन्स क्या आपके रिसेप्टर्स जो है ऑयल ग्लैंड्स पे उन पे जुड़ेंगे कि नहीं. ये एक ताला चाबी की तरह है. अगर आपका ताला आपकी चाबी को फिट कर रहा है तो आपके हॉर्मोन्स आपके ऑयल ग्लैंड्स को खोलेंगे और उसमें से निकलेगा ऑयल. सबके हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं लेकिन सबकी स्किन तो ऑयली नहीं होती, क्योंकि उनके जो रिसेप्टर्स है वो सेंसिटिव ही नहीं है हॉर्मोन्स के लिए. उनका शेप ही ऐसा है कि हॉर्मोन आ रहा है वो घूम के चले जा रहा है, वो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं कर रहा है. उनकी ड्राई स्किन है. सो मोस्ट पीपल विद ड्राई स्किन हैव नो टेंडेंसी ऑफ एक्ने, विच इज वाई. तो ये जो ऑयल निकल रहा है ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है. इट्स नॉट द ओनली कल्प्रिट बट इट्स अ बिग कल्प्रिट. ऑयल फंस जाता है स्किन में, उस पर डेड स्किन सेल्स भी फंसती हैं. स्किन में मतलब हेयर फॉलिकल में, वहाँ ऑयल फंस गया, हमारे डेड स्किन फंस गई, और वहाँ पे हमारे स्किन पे एक नेचुरल बैक्टीरिया होता है कॉल्ड क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस. वो आप में है, मुझ में है, हम सब में है, लेकिन अब वो उसको एनवायरमेंट मिल गया ग्रो करने का तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा. अब बॉडी को लगा कि ये बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसको मारने के लिए मैं कुछ करती हूँ, तो उसने भेज दी इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो बनाते हैं पस. और ये होता है एक हमारी बॉडी का रिएक्शन टू दैट बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, विच इज पिंपल.
0: इंटरेस्टिंग. तो ये कैसा ताला है जिसे नहीं खुलना चाहिए?
1: नहीं खुलना चाहिए, बट वो आपके मेरे हाथ में नहीं है.
0: या सो वंस वी कैन डू नथिंग अबाउट इट. सो इफ यू आर बोर्न विद इट, यू आर बोर्न विद इट.
1: यू आर बोर्न विद एक्ने प्रोन स्किन. बट एक्ने प्रोन का मतलब ये नहीं कि एक्ने होगा ही होगा.
0: करेक्ट.
1: आप जब मुझे 12 साल की उम्र में देखते, मुझे बहुत एक्ने था. 15 साल पे आई वॉज गिवन माई फर्स्ट ओरल मेडिसिन बिकॉज इट वॉज सो मच कि लगाने की ट्यूब्स नहीं ठीक कर रही थी. एंड आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन हु वॉज फिट इन टू एक्टिविटीज. आई वॉज अ प्लेयर, पर सब कुछ मेरा बढ़िया था. आई वॉज नॉट ओबीज और ओवरवेट, लेकिन एक्ने था मुझे. तो आई वॉज गिवन ओरल बिकॉज सिंपल चीजों से बात नहीं बन रही थी, तो मेरे डॉक्टर ने डाला. बट उससे वो मेरा कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
0: पर
1: आज अब इतने पेशेंट्स को जो मैं क्लिनिक में बताती हूँ, मोस्ट डेज आई हैव स्पेक्टेक्युलर स्किन. तो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर आप कैसे बोल रहे हो, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको पिंपल था.
0: या
1: सो अब जब मुझे पिंपल कभी आता मैं फोटो खींच लेती हूँ, आया था लास्ट वीक.
0: या बट पिंपल्स भी बहुत तरह के होते हैं. एक्ने भी बहुत तरह के होते हैं क्या? एंड आई एम अज्यूमिंग दैट डिफरेंट पिंपल्स विल रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. डिफरेंट एक्ने जो बढ़ जाता है आपकी बॉडी में उसका भी अलग अलग ट्रीटमेंट होगा. ये कैसे पता चलेगा कि किसको क्या हुआ है और क्या लगाना है? बिकॉज लोग अपने घर के नुस्खे बहुत ट्राई करते हैं. कोई टूथपेस्ट लगा रहा है, कोई कैस्टर ऑयल लगा रहा है, कोई पिंपल टेप्स आजकल आ गए हैं वो लगा रहे हैं. आई मीन देयर इज सो मच दैट इज आउट देयर. हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट पिंपल डू यू हैव?
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनफैक्ट एज डॉक्टर्स पहले हम यही सीखते हैं कि पिंपल टाइप क्या है, पहले देखना सीखते हैं हम, क्लिनिकली डायग्नोस करना सीखते हैं, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां हैं कि आप कैसे चूज करोगे, क्योंकि हर दवाई का एक टारगेट है. सो यू नो, अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो तीन टाइप के पिंपल हैं लेमन लैंग्वेज में, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर. माइल्ड एक्ने क्या होता है कि जब आपके ये आपका हेयर फॉलिकल है और ये आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, सारे के सारे ऑयल ग्लैंड्स हेयर फॉलिकल से जुड़े होते हैं, इंडिविजुअली ऑयल ग्लैंड्स नहीं पड़े होते स्किन में, तो इसीलिए पिंपल होता है हेयर फॉलिकल के अंदर. अब ये जब ऑयल निकला, पहले ऑयल ने क्या किया, यहाँ जाके ऊपर आके क्लॉग हो गया, ज्यादा ऑयल आ गया. अब ये जो ऑयल है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमोसफियर की ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है. जैसे कि एप्पल काटते हैं वो काला पड़ जाता है, तो ये ऑयल काला पड़ गया, इसको बोलते हैं ब्लैक हेड, जो कुछ इस टाइप से दिखता है, या फिर नोज पे बहुत लोगों को होते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखता है, ये ब्लैक हेड्स हैं. कभी कभी ये स्किन के अंदर ही रहता है, उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग है, अंदर ऑयल है, उसे हम कहते हैं वाइट हेड. तो इसमें सिर्फ ऑयल है. सो जो ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, ये सिर्फ ऑयल को दर्शाते हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया अभी ग्रो नहीं किया है, ये सिर्फ ऑयल है, तभी इनमें दर्द नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया आया ही नहीं अभी तक, तो बॉडी ने इन्फ्लेमेशन किया ही नहीं है. सो ये फर्स्ट स्टेज होती है एक्ने की.
0: बट इफ दिस इज जस्ट ऑयल,
1: हाँ,
0: व्हेन यू स्क्वीज इट,
1: हाँ,
0: व्हिच इज वेरी सैटिस्फाइंग, वेरी रॉन्ग टू डू, बट वेरी सैटिस्फाइंग, इट डजंट कम आउट एज ऑयल, इट कम्स आउट एज अ सॉलिड सब्सटेंस.
1: वो येलो जो है, हाँ, वो ऑयल है, वही ऑयल है. दैट इज एग्जैक्टली वॉट इज ऑयल, उसको सीबम कहते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट ऑयल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड सेल्यूलर डेब्री, जो टूटे हुए सेल्स का कचरा है, उसको हम सेल्यूलर डेब्री कहते हैं. तो उसका एक मिक्सचर है, जैसे हम सीबम कहते हैं.
0: Got it.
1: सो इट इज नॉट ऑयल. ऑयल आपका कान में भी बन रहा है, वो ईयर वैक्स, बट दैट्स नॉट द सेम एज दिस ऑयल.
0: Right.
1: सो देयर आर डिफरेंट ऑयल्स.
0: Fascinating.
1: राइट. एंड जब अब इस वाइट हेड ब्लैक हेड पे जब बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देगा, तब आएगा पस. इसे हम कहते हैं पैप्यूल. तो ये बनते हैं ऐसे लाल दाने, जो एक बहुत कॉमन कंडीशन दिखती है, लाल लाल लाल दाने हर जगह हैं. और जब इन लाल दानों पे इतना इन्फ्लेमेशन हो जाएगा कि उनमें पस ही भरने लग जाए, इतना बड़ा पस बन गया है, तो उसे हम कहते हैं पस्ट्यूल, जो ये होते हैं पस. तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस हैं. और फाइनली
0: विल ऑल पिंपल्स स्टार्ट विद अ ब्लैक हेड?
1: सम पीपल ओनली हैव ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उनका कभी बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करता उसके आगे. और वो सबका बैक्टीरिया सेम टाइप का है, बट उसके आजू बाजू कौन से बैक्टीरिया रह रहे हैं, वो उसको एक्चुअली ज्यादा प्रोड्यूस होने दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जगह तो सेम है स्किन पे. तो अगर गुड बैक्टीरिया है तो वो इस बैड बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगे, यू नो. सो इट इज अ कॉम्पिटिशन. तभी हम कहते हैं ओवर क्लेंजिंग मत करो. क्यों हम कहते हैं एक्ने में, लोगों को लगता है ऑयल हटा देते हैं, बट आप गुड बैक्टीरिया भी हटा रहे हो, तो आप गुड बैक्टीरिया हटाओगे तो बैड बैक्टीरिया तो प्रोलिफरेट करेगा, उसको जगह मिल गई ग्रो करने की. तो हमें ये भी समझना है. तो ये होता है जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो पास आ गया है. कभी कभी बैक्टीरिया बहुत डीप ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऑयल अंदर है, ऑयल बहुत नीचे है, इसे हम कहते हैं नोड्यूल, कि अंदर ही अंदर बहुत पस बन रहा है और बाहर पस पॉइंट दिख नहीं रहा है. सो दिस इज अ नोड्यूल. दिस इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने, और ये जनरली लगाने की दवाइयों से कम ठीक होता है, क्योंकि अंदर ऊपर तो उसके नॉर्मल है, वो अंदर है प्रॉब्लम. तो इसे हमें लगाने की गोली से, इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल एंड हैज अ लॉट ऑफ टेंडेंसी टू गिव यू पिट्स.
0: यस,
1: यू नो, बट मोस्ट पेशेंट्स विल हैव अ कॉम्बिनेशन जिसमें ब्लैक हेड भी हैं, कुछ व्हाइट हेड आ गए हैं, कुछ रेड पस वाले हैं, कुछ रेड बिना पस वाले हैं, पैप्यूल्स हैं, पस्ट्यूल्स हैं. दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्ने.
0: गुड लॉर्ड.
1: Yeah.
0: Yeah. Oof. So, what I'm taking away from this is that A, getting pimples on your face might not be a factor of what you're doing wrong.
1: Yeah.
0: It could largely be defined by genetics. That's number one.
1: Yes.
0: Second, I'm taking away is that अगर एक दो निकल रहे हैं तो इट्स ट्रीटेबल. इफ यू आर गेटिंग लाइक एन आर्मी ऑफ इट, लाइक अ सुनामी ऑफ इट ऑन योर फेस, व्हिच इज बेसिकली व्हेन इट बिकम्स एक्ने, दैट्स व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. एम आई करेक्ट टू से दैट?
1: यस. पता है ये बहुत डिपेंड करता है कि किसको मेडिकल इंटरवेंशन कब लेना है. यू नो, हमारी साइक सबकी अलग अलग है. कुछ लोग होते हैं, अरे डॉक्टर पिंपल क्या ठीक हो जाएंगे, चिल पर्सनालिटी, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता उनको क्यों ट्रीट करना है, बिकॉज वी ट्रीट फॉर आर सेल्व, वी डोंट ट्रीट फॉर अदर पीपल. अगर मेरी साइक को अफेक्ट करा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं एक वाइट हेड भी उनको अफेक्ट करता है. तो अब
0: ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास
1: बिकॉज या तो उनका काम ऐसा है कि उनको उनका जॉब डिमांड करता है कि एक भी चीज ना दिखे, बिल्कुल स्पेक्टेकुलर स्किन दिखे. और कुछ लोग होते हैं जिनका नॉन शलांत बिहेवियर होता है, तो सबका अपना अपना है.
0: कुछ लोगों की पिंपल चले गए लेकिन मार्क्स बहुत मार्क्स बहुत कर रहे हैं उनको.
1: यस तो सबका सब स्टेजेस का एक अलग ट्रीटमेंट होता है. बहुत चीजें आपको ये समझना है कि मार्क्स बीमारी नहीं है. मार्क्स आर लाइक रेसिड्यू, वो तो छूट गया है. जब भी इंडियन स्किन पे, ब्राउन स्किन पे चोट लगेगी, एक्ने भी टाइप की चोट है, तो वो काला दाग छोड़ेगी. अब आप कुछ नहीं भी करोगे तो वो अपने आप चला जाएगा. इनफैक्ट अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाओगे, मार्क अपने आप चला जाएगा. क्यों? बिकॉज मार्क में क्या है, कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और वो सेल्स भी एक्टिव हैं. उनको धूप मिलेगी विच इज देयर स्टिमुलस, तो वो कलर और बनाएंगे. अगर आपने उनको एक छतरी दे दी या सनस्क्रीन दे दी तो उनका शील्ड हो गया, देयर शील्डेड फ्रॉम यूवी एक्सपोजर, तो उनको स्टिमुलस नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही विड्रॉ हो जाएंगे.
0: Got it.
1: So sunscreen goes a long way for marks. और अगर आपको उसको ठीक भी करना है तो मार्क्स को डिसॉल्व करने के लिए भी बहुत सारी चीजें आती हैं.
0: पर कोई भी सनस्क्रीन और पर्टिकुलर काइंड ऑफ सनस्क्रीन,
1: जो भी सनस्क्रीन आप लगा सकते हो और आप लगाते हो जो आपको सूट करती है. यू नो आजकल इंडिया में, आप गैजेट ऑफ इंडिया में आ गया है कि आपको सनस्क्रीन की इन वीवो टेस्टिंग करवाना जरूरी है इंडिया में.
0: व्हाट इज दैट
1: इन वीवो टेस्टिंग? मतलब लाइव स्किन पर टेस्ट. यू कैन नॉट जस्ट डू इट इन अ लैब और कोई भी यू नो फैंसी गैजेट्स के थ्रू अपना टेस्ट किया और SPF लिख के मार्केट में बेच दिया, दैट्स नॉट अलाउड एनी मोर. तो आपको इन वीवो टेस्टिंग करनी है जो एक्चुअल ह्यूमन स्किन पे हुई है.

0: हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया इंडियन सनस्क्रीन पे. तो अब आज के जमाने में, थैंक्स टू दिस चेंज दैट द गवर्नमेंट मेड, अब हम थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं कि इंडियन सनस्क्रीन टेस्टेड है और आप उसको लगा सकते हो. अब इतनी सारी हैं, अगर आपको कोई सूट करती है कि इसका डॉक्टर मुझे टेक्सचर पसंद है, यू यूज इट.
1: एंड यूज इट रेगुलरली, विच इज द टफेस्ट
0: रेगुलरली,
1: पार्ट अबाउट सनस्क्रीन.
0: दैट्स
1: हर
0: द
1: दो
0: पार्ट.
1: घंटे में पर डॉक्टर जोशिया कोई नहीं लगा सकता है. आई मीन इट्स इम्पॉसिबल अनलेस यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी एंड इट इज समबडी एल्सेस जॉब टू इंश्योर कि आपकी सनस्क्रीन फिर से लगाई गई है. कोई हर दो घंटे में सनस्क्रीन नहीं लगा सकता. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल.
0: आई कंप्लीटली अग्री टू योर पॉइंट. और इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे हम लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन बनाए, बिकॉज ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल इशू है, आई विल नॉट डिनाई दैट. और पर ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, जिनको दिक्कत है उनको दिक्कत है, वो फिर करते हैं. उनके लिए फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यू नो, टू बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस एंड टू लुक द वे दे डिजायर. तो और बट ये मैं पूछना चाहती हूँ, कितने लोग एक बार करते हैं? तो दो बार छोड़ो, एक बार तो करो. या जस्ट एटलीस्ट डू इट बिटवीन 10 AM टू 2 PM. 10 बजे तो लगा लो, जब यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, जब आपका ऑफिस का आवर है, जब सर बिल्कुल धूप बिल्कुल ऊपर है तो यूवी इंडेक्स तब बढ़ता है. आप 4 बजे के बाद मत लगाओ. सो डू इट वंस इफ यू वांट टू डू इट स्मार्टली.
1: ओके, बट लेट्स मूव बैक टू पिंपल्स फॉर अ लिटिल बिट एंड अंडरस्टैंड कि इसका क्योर क्या है. लाइक आई सेड कि ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स के लिए अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है एज दे प्रोग्रेस, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू नो इन डेप्थ बैक्टीरिया इज, लाइक यू एक्सप्लेन्ड, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट बदलता है. डू यू हैव सम इजी सॉर्ट ऑफ केमिस्ट ड्रग स्टोर यू नो सोल्यूशन दैट पीपल कैन गो टू?
0: सो अगर आपको सिर्फ लेट्स से ब्लैक हेड या व्हाइट हेड है, तो आपको क्या चाहिए कि मेरा कोई ओल्ड ये जो ऑयल आ गया है ये डिसॉल्व कर दे. ठीक है, जैसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो ऑयल को डिसॉल्व करता है, राइट. अब थोड़े दिन पहले ये चर्चा चली थी कि अभी गवर्नमेंट ने जन औषधि में एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश लॉन्च कर दिया है. वो एक्चुअली 3 साल पहले लॉन्च हो चुका है, वो अभी बस ट्रेंड कर रहा है. तो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश अब हर जगह अवेलेबल है, बट फॉर देम इट इज़ अ फार्मेसी प्रोडक्ट. ओके, बट बहुत सारे ओवर द काउंटर सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेज आते हैं जो ऊपर का ऑयल, ऊपर का जो डर्ट है उसको हटा सकते हैं. बट अंडरस्टैंड दैट फेस वॉश सिर्फ ऊपर की ऑयल को हटाएगा. वो जो अंदर पूरा आपके हेयर फॉलिकल में हेयर ऑयल क्लॉक्ड है, यहाँ तक नीचे नहीं जाएगा. तो यहाँ पे क्या काम करेगा? सैलिसिलिक एसिड सीरम जो लगा हुआ है स्किन पे, बिकॉज फेस वॉश इज रिंस्ड ऑफ आफ्टर 2 मिनट्स. सो दैट्स वाई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर सिर्फ सैलिसिलिक फेस वॉश नहीं कर सकते, सीरम भी करना जरूरी है, क्योंकि वो डीप कौन जाएगा? फेस वॉश तो आपने हटा दिया, तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड सीरम आता है, 2% सैलिसिलिक, 1% सैलिसिलिक सीरम. तो लोग ये लगाते हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए. अब कई बार ये भी होता है कि जब आप पहली बार लगाना शुरू करते हो, लोग कहते हैं डॉक्टर आप, हमने तो इंटरनेट पर सुना था लगाते हैं और हमें तो पिंपल बढ़ गए. तो क्योंकि वो आधी इन्फॉर्मेशन है. आपने समझना है कि जब ऑयल बाहर निकल रहा है तो वो एक्चुअली बैक्टीरिया उस पर भी ग्रो कर सकता है. तो वो रेड आपका था ब्लैक हेड व्हाइट हेड, वो कन्वर्ट हो गया पिंपल में. ऐसा भी किसी किसी को होता है, विच इज वाई हम सबकी बॉडी डिफरेंट है. तो ऐसा नहीं सैलिसिलिक सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, किसी किसी को वर्सन भी करता है.
1: राइट, इनफैक्ट ओवरडूइंग सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट डिस्ट्रॉयज योर स्किन.
0: यस, बिकॉज आपने पूरा ही ऑयल हटा दिया, जो आपको थोड़ा बहुत ऑयल अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए चाहिए था. आपकी स्किन सेल्स है ना ब्रिक्स की तरह, उनके बीच में सीमेंट है, जहाँ पे थोड़ा ये ऑयल एक रोल प्ले करता है सीमेंट में. आपने वो सीमेंट ही हटा दी, तो जिसे हम कहते हैं बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि आपने पूरा ऑयल निकाल निकाल दिया अपनी स्किन का. यू नो, उससे प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ऑयल तो फिर बन रहा है, फैक्ट्री तो अंदर है, आपने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से हटाया. तो इनफैक्ट बॉडी को लगेगा ड्राई स्किन हो रही है मेरी, और ऑयल बनाते हैं. सो इट इज वेरी नुआंस्ड. एक्ने इज नॉट सो सिंपल. हमारी पूरी इतनी मोटी किताब होती है जिसमें सिर्फ पिंपल्स के बारे में पढ़ाया जाता है. तो आप समझ सकते हो कि बट जिसको अगर सिंपल सोल्यूशन चाहिए बिफोर यू मीट अ डॉक्टर, आप एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज कर सकते हैं, एक सैलिसिलिक एसिड सीरम कर सकते हैं अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है तो.
1: राइट,
0: अगर आपको एक्ने हो रहा है, जो पस्ट्यूल है या पैप्यूल है, रेड वाले हैं, जो पस वाले हैं, जैसे लेट्स टेक दिस फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको ये टाइप का एक्ने हो रहा है, तो जैसे मैंने बताया इस पे बैक्टीरिया है, तो आपको एंटीबैक्टीरियल चाहिए. चाहे वो लगाने का एंटीबायोटिक हो सकता है, चाहे वो खाने का हो सकता है. आजकल फेस वॉशेज में भी एंटीबायोटिक आते हैं, बट ये सिर्फ सैलिसिलिक एसिड से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑयल से थोड़ा आगे बात बढ़ चुकी है. सो इसके लिए हम देते हैं देयर मॉलिक्यूल्स लाइक क्लिंडामाइसिन 1% जेल, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, दिस बेंजोल परोक्साइड, सो समथिंग लाइक क्लिंडामाइसिन विद नायासिनमाइड. बट यूजुअली दीज डॉक्टर्स विल राइट फॉर यू, बिकॉज प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि अगर आपको मैंने बता दिया और आपने यूज कर लिया, और फिर आप क्या करोगे, आपको पता नहीं कब तक यूज करना है.
1: या
0: तो आपने एक हफ्ते यूज किया, फिर आपने छोड़ दिया और आपको आ गया रेजिस्टेंस, क्योंकि एंटीबायोटिक है, और फिर आप पे दोबारा कभी काम नहीं करेगा. और रिसर्च इतना तेज नहीं होता जितनी तेज आपके पिंपल्स बढ़ते हैं. तो रिसर्च तो अभी है 4 या 5 एंटीबायोटिक्स

0: पे 200 साल में, राइट? तो आप इनको 4-5 से काम चलाना है, तो आप इसको जुडिशियसली यूज करोगे तभी
1: बिकॉज दिस इज
0: जितना.
1: सो इजली अवेलेबल ओवर द काउंटर.
0: यस
1: लाइक आई रिमेम्बर इन माई टीनेज इयर्स क्लिंडामाइसिन यूज टू बी सच अ थिंग. जिसको भी पिंपल हो रहा है क्लिंडामाइसिन लगा रहा है, एंड नाउ यू
0: बिकम रेजिस्टेंट.
1: आई डिडंट नो दिस इज एन एंटीबायोटिक. दैट्स क्रेजी.
0: क्लिंडामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक. सिमिलरली जैसे पहले कुछ कुछ एंटीबायोटिक काम करती थी, जैसे म्यूपरोसिन, अब वो काम ही नहीं करती हैं क्योंकि हमने ऐसे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा यूज करके जब मन मर्जी है उससे खुद को रेजिस्टेंस कर लिया है और कम्युनिटी रेजिस्टेंस आ गया है. सो एंटीबायोटिक्स आपको तब तक ही लिखनी है जब तक डॉक्टर ने लिखी है. जैसे आप खाते हो क्योंकि लगाने का है तो इसको लेस सीरियसली नहीं लेना है,
1: Got it.
0: यू नो.
1: That's good information.
0: सिमिलरली यू नो देर आर देर इज बेंजोल पेरोक्साइड. तो अब क्लिंडामाइसिन के साथ पहले नायासिनमाइड आता था, अब ज्यादा बेंजोल पेरोक्साइड क्यों आता है? क्योंकि प्लेन क्लिंडामाइसिन का तो रेजिस्टेंस आ गया है, तो हमें बेंजोल पेरोक्साइड
1: Oops.
0: डालना पड़ता है. उससे आपका स्किन का इरिटेशन बढ़ेगा थोड़ा सा, लेकिन क्लिंडामाइसिन को काम करने के लिए अब चाहिए वो. तो बेंजोल पेरोक्साइड क्यों, कैसा क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीबायोटिक ने क्या किया, वो बड़ा स्मार्ट है, बैक्टीरिया बड़ा स्मार्ट है, उसने अपना डीएनए मॉडिफाई कर लिया है. अब वो एंटीबायोटिक उसके डीएनए पे काम ही नहीं कर पाती. उसने क्या करना शुरू कर दिया, एक सब्सटेंस निकालता है हमारा बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं बायोफिल्म, और वो अपनी अपने सारे बैक्टीरिया के आसपास एक चादर की तरह बायोफिल्म बना लेता है. अब इस बायोफिल्म को घुस को काटेगा कौन, उस ब्लैंकेट को, ये जो फोर्ट बन गया है, जो राजा जी ने फोर्ट बना दिया है, उसके अंदर सेना घुसेगी कैसे, वो है बेंजोल पेरोक्साइड. ये करेगा वो छेद जिसके थ्रू फिर क्लिंडामाइसिन बेचारा घुस पाएगा अंदर. सो अब किसी दिन इसका भी रेजिस्टेंस आ जाना है.

0: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था, और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ऑफ फॉलन सोल्जर सेज
1: यस
0: दैट फैमिली विल से मैं तेरे टैक्स का पैसा दे दूंगा, मेरा बेटा वापस करो।
1: ट्रू
0: एज
1: अनडाउटेडली
0: मिस्टर राहुल गांधी एडमोनिश सच अ पर्सन, वी ऑल हैव अ पॉलिटिक्स टू फाइट, बट आवर पॉलिटिक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन आवर कंट्री। वी ऑल विल इंडल्ज इन पोलिटिकल स्कर्मिशेस, वी विल ऑल इंडल्ज इन पोलिटिकल बैटल्स डिबेट्स, बट नथिंग ओवर राइड्स द सेंटिमेंट फॉर आवर कंट्री। डिड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उमर अब्दुल्ला मेड अ स्टेटमेंट, बट डिड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेप अप एंड से यू कैन नॉट शट डाउन एट एन आर्म फोर्स पर्सनल एंड से मैं टैक्स भरती हूँ बिकॉज आई एम जेन जी। दे आर जेन जी हु सर्व इन द इंडियन आर्म फोर्सेज, दे आर
1: यस
0: जेन जीज हु सर्व इन द फ्रंट लाइन एज हेल्थ वर्कर्स, दे आर जेन जीज हु आर इंजीनियर्स, दे आर जेन जीज हु आर टेक्नोलॉजिस्ट, दे आर जेन जीज हु आर इवन इन दिल्ली पुलिस हु आर गेटिंग बीटन अप।
1: यस
0: डिड राहुल गांधी स्पीक अप फॉर दोज जेन जीज?
1: स्मृति
0: सो लेट्स
1: ईरानी
0: स्टॉप डिवाइडिंग पीपल नाउ
1: यस
0: ऑन द बेसिस ऑफ एज। एवरी इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन रिलीजन कास्ट एंड एज इज रेलिवेंट एंड एवरी इंडियन इंस्टीट्यूशन डिमांड्स एंड डिजर्व्स रिस्पेक्ट, विच इंक्लूड्स द पार्लियामेंट दैट मैंडेटेड द फुल रेंडिशन ऑफ वंदे मातरम।
1: Smriti Irani for joining me here on this India Today special broadcast. Many thanks.
0: Thank you.
2: You are watching India Today.

देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय।

0: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है।
1: Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied. Not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
1: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
1: अब मैं क्या ही बोलूं?
5: परिवार अटूट भरोसा।

0: It is the first meeting of the BJP's Nabin team that we have been, in fact, keeping you updated with regards to since morning. The meeting had begun a few hours back. The meeting between Nitin Nabin, the office bearers, new office bearers, have now come out to conclude. This is just the first round, viewers remember that. Nabin chaired the introductory meeting and formally introduced all of the members. Modi at 25 celebrations are to be planned in this very session. The talks to be held on the upcoming polls as well. Several state assemblies, that, elections that are in fact scheduled for the upcoming years. Till 2029, the battle of battles that shall be their biggest test for this very team that's been formed. And the organizational strategies were discussed only in round one. Again, several other rounds are to continue in the day itself. As we speak, the meeting between the BJP National President Nitin Nabin and the office bearers has concluded, is what we are learning. Now, the inside scoop that we are getting to learn of is that the BJP meeting of office bearers with Nitin Nabin, during this meeting, they were instructed to prioritize Yuva Samvad, which is youth dialogue. And of course, given the circumstances that have unfolded in the country, the youth connect and reach is one of the most crucial points that remains on their agenda at this given time. We have Sushant Behra joining us on the broadcast with more details. Sushant, Yuva Samvad jo theme hai, jo ek agenda ke tarah rakha gaya hai, wo kaafi उस चीज पर काफी स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसको एक प्रायोरिटी माना जा रहा है, स्पेशली अभी के टाइम में जब हमने देखा है कि जेन जी, उनके मूवमेंट्स, उनके ओपिनियंस, ये और उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस, इसको किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कनेक्ट बनाने के लिए अपने वोटर बेस के साथ, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या डिस्कशन हुई है उस बारे में?
1: देखिए श्रेया, पहले दौर की जो बैठक है, इंट्रोडक्शन बैठक, वो फिलहाल जो है वो खत्म हुई है। यानी जितने भी 65 नए पदाधिकारी थे उनके साथ नितिन नवीन की बैठक हुई, इंट्रोडक्शन जो है वो दिया गया और ये बताया गया कि किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है। और उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जेंजी, जो एक बड़ा मुद्दा इन दिनों पूरे देश भर के अंदर सामने आ रहा है, उसको किस तरीके से अपने पाले में बनाए रखना है, अपने पाले में रखना है, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव आए थे युवा जो थे वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों एजिटेशन देखने को मिला देश भर के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक जेंजी जो है वो डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आया है बीजेपी को। और यही वजह है जिसको लेकर के इस बैठक में खास तौर पर ये फैसला लिया गया है कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो हर स्तर पर जेंजी और जो युवा है उनसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें, युवा संवाद जो है उसको कनेक्ट करें, ताकि युवाओं का वोट अगले चुनावों के अंदर जो है वो अपने पास वापस आ सके। 2027 के अंदर चुनाव है अलग अलग राज्यों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, इन तमाम राज्यों के अंदर चुनाव है। और इन राज्यों के अंदर युवाओं का वोट कैसे बीजेपी अपने पाले में वापस लेकर के आए, इस पे स्ट्रेटेजी जो है वो शुरू होगी। अभी पहले दौर की बैठक जो 1 बजे तक 10 बजे शुरू हुई थी, लगभग 10:15 बजे शुरू हुई थी, वो खत्म हुई है। अब विस्तार के अंदर एक दूसरी बैठक जो है वो शुरू हुई है। मोदी एट 25 यानी 25 साल के जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चाहे वो बतौर मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में रहा हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 साल से, उस तमाम कामकाज को दिल्ली की, देश भर की जनता को, माफी कीजिएगा, देश भर की के जो लोग हैं, युवा हैं, लोगों से किस तरीके से कनेक्ट करना है, उस पर अब चर्चा जो है वो शुरू हुई है। विस्तार के अंदर प्रदेश के तमाम जो अलग अलग प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग राज्यों के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं, उनके साथ पदाधिकारी भी हैं, इसके अलावा पूर्व पदाधिकारी भी हैं। इस बैठक के अंदर अगर कहा जाए तो जो पुराने पदाधिकारी थे जिनको बीजेपी की पहली टीम के अंदर जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब नई टीम में उनको एक बार फिर से मौका मिला है, उनके साथ किस तरीके से स्ट्रेटेजिकल चुनावों में आगे बढ़ना है 2027 के और उसके बाद 2029 के, इन बैटल को जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो देखी जाएगी, ताकि आगे जाकर के युवाओं से कनेक्ट किया जाए, लोगों के बीच में जाया जाए और हर स्ट्रेटेजी पर काम करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की नई टीम के रूप में जो है नितिन नवीन जो है वो पदाधिकारियों को गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सुशांत, और अगर हम अगले कुछ चुनाव की बात करें जो अभी आने वाली है 2027 की भी बात करें, तो ये जो जेंजी मूवमेंट्स हुए हैं इनका इम्पैक्ट काफी भारी मात्रा में देखा जाएगा, क्योंकि एजुकेशन एक बड़ी बड़ा मुद्दा है जो इनके द्वारा उठाया गया है। पंजाब में अगर देखें वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को ही लेके। तो इस दौर में पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने कैबिनेट से कहा है कि यूथ रीच बढ़ाइए, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाइए। उसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे भी इस बीजेपी के मीटिंग में भी युवा संवाद को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो अगर हम युवा संवाद की बात करें इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से, उस बारे में इनकी क्या स्ट्रैटेजी पता चल रही है, इसके बारे में कोई जानकारी है कि ये कैसे सिर्फ सोशल मीडिया फुटप्रिंट बढ़ाना नहीं बट मीनिंगफुली कैसे उसको बढ़ाएं, इस बारे में बात किया गया है?
1: हाँ देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा की गई है। सिर्फ सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं करना कि सोशल मीडिया पर जाएं, चाहे वो एक्स पर जाएं, चाहे वो इंस्टा पर जाएं और ताकि कनेक्ट करें, लेकिन ग्राउंड पर जाकर के भी युवाओं से कनेक्ट करना है। कॉलेजेस के अंदर देखा जाए तो DU का इलेक्शन है, वहाँ पर किस तरीके से युवाओं को कनेक्ट करना है, इन सब पर जो है वो चर्चा की गई है, ताकि युवा कहीं पर भी बीजेपी के जो है से छटक करके किसी दूसरी पार्टी की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन 15-16% के आसपास, 17% के आसपास युवाओं का वोट जो है वो बीजेपी को मिलता रहा है, और अगर ये वोट खिसकता है तो बीजेपी को एक बड़ा नंबर का जो है नुकसान जो है वो होगा लोकसभा में खासतौर पर। और उसका अगर देखा जाए तो अभी अगले साल पंजाब में चुनाव है, पंजाब में भी युवाओं को लेकर के कई सारे एजिटेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, पिछले दिनों दिल्ली में देखने को मिला, और उसकी जो रीस थी वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों के अंदर देखने को मिली थी। और यही वजह है कि बीजेपी की एक नई स्ट्रेटेजी ये है कि युवाओं को जो संवाद है उनका जो कनेक्ट करना का जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं रहे बल्कि ग्राउंड पर जाकर के कॉलेजेस हो, चाहे वो स्कूल हो, युवाओं से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो कोशिश करेगी बीजेपी, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि पब्लिकली जाकर के जनता के बीच जाकर के कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो करेगी।
0: सुशांत, अगर हम इस टीम के सदस्यों को देखें, यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस्ड लोगों की भी प्रेजेंस देखने को मिलता है, वेटरन्स को हम देख पा रहे हैं ये जो विजुअल्स आए हैं, और जो नए टीम मेंबर्स का एक ओवरहॉल हुआ है उसमें भी हमें जो पता चल रहा है, पर यंग ब्लड जो यंग लीडर्स है उनकी भी प्रेजेंस काफी भारी मात्रा में देखा जा रहा है। कोई स्पेसिफिक टीम फॉर्म किया गया है इन्हीं के बीच में जो इस चीज को ओवरलुक करेंगे कि यूथ के साथ आउटरीच कैसे जारी रखें?
1: देखिए, अभी फिलहाल जो टीम है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस फिलहाल नहीं है, उसमें कोई नई टीम का अलग से गठन जो है वो नहीं किया गया। इसी टीम के साथ जो 65 पदाधिकारी है उनमें अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ लोगों को अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग जो अगर कहा जाए तो अलग अलग पदों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। कुछ लोग अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके लिए सोशल मीडिया को किस तरीके से कनेक्ट करना है वो जिम्मेदारी दी जाएगी।
0: सुशांत, मैं आपको
1: जो रैली करते हैं
0: आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी थोड़ी देर के लिए। व्यूअर्स, वी आर गेटिंग मोर न्यूज राइट नाउ, लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू व्हाट वी आर लर्निंग। बीजेपी पासिंग अ रेजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट Vande Mataram. They've opposed Congress's two-stanza Vande rendition. Remember, at the CWC meeting, the Congress had come out to declare that they will stick to the two-stanza version itself. But the BJP too, in this very meeting, has come out to oppose that very decision of the Congress, and they have passed their own resolution. The first meeting of BJP's Nabin team, we see the meeting that's taken place has of course concluded, and this resolution that's been passed. Let me quickly take you through some of the takeaways that we're given to understand from it. Number one is condemning and unequivocally opposing the Congress Working Committee's decision that was taken on 19th August to stick to the two para rendition, that is the 1937 version of the Vande Mataram. Again, to uphold the honor, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram in as the national song of the country and to affirm the constitutional and statutory status of the Vande Mataram, which was established by the Constituent Assembly 1950 pronouncement and reinforced by the Parliament in 2026. It's 150 years of Vande Mataram that we are, in fact, celebrating this year. And these are just a few takeaways that we're bringing to you in terms of the resolution that's been passed by the BJP on Vande Mataram. On that note, viewers, we are wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates through the day. Thank you for watching.
2: You are watching India Today.

देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय।

0: Beginning with breaking news coming in, Prime Minister Modi is to meet BJP's Nabin team. Remember, they are having their introductory meeting today since morning at the BJP headquarters. What we are now learning is 7 p.m. The Prime Minister is to be meeting this new BJP team, the office bearers who have all gathered at the BJP headquarters. And BJP headquarters is now gearing up for the high voltage meeting to take place at 7 p.m. when the Prime Minister will be addressing them, coming in, meeting them. And the Prime Minister will, in fact, come into the headquarters at 7 p.m. is what we are learning. Again, of course, before that, there are three rounds of these meetings that are to be held. The first round has already concluded with a very crucial resolution having been passed against the Vande Mataram row. In fact, when we say against, they have come out to pass the resolution against what was decided and declared at the CWC meeting, which is the Congress Working Committee's meeting on 19th August, that the Congress will be sticking to the two stanza rendition of Vande Mataram that was and that has been sung since 1937. To oppose that, the BJP, the working committee today of the BJP, the Nabin team of the BJP has come in. The major overhaul that took place just a few days back within the BJP to gear up for the upcoming elections and, of course, finally the 2029 elections to increase their youth reach, to come in and plan the Modi at 25 celebrations, all of that. This very team will be at the helm of affairs. They have come out to pass this very resolution in the first round of the introductory meet itself. Let's listen in to Sambit Patra, who's currently addressing the media over this very meeting. Listen in to what he has to say.
1: अपना बलिदान दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए. वैसे महामंत्र वंदे मातरम के सम्मान में यह प्रस्ताव जारी हुआ है. आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में वंदे मातरम को लेकर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हुए. यह वर्ष वंदे मातरम का 150वां, एक तरह से कहा जाए तो जयंती सालगिरह मनाया जा रहा है. हिंदुस्तान के कोने कोने में वंदे मातरम के प्रति सम्मान, उसके प्रति भाव, उसके प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है. मैंने वंदे मातरम के लिए मंत्र इसलिए कहा क्योंकि इस मंत्र के मूल में देश है, इस मंत्र के मूल में देशभक्ति है. पहली बार भारत के इतिहास में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीए की सरकार को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो एनडीए की सरकार का अगुवाई कर रहे हैं. पहली बार भारत के इतिहास में 15 अगस्त 2026 को संपूर्ण वंदे मातरम का 6 स्टैंजास जिसमें हैं, 6 पद जिसमें हैं, संपूर्ण वंदे मातरम का पठन, उसका गायन लाल किले के परिसर में हुआ. यह एक नया इतिहास बना. सूर्योदय के साथ हमने संपूर्ण वंदे मातरम को सुना, सराहा, नमन किया तो सूर्य अस्त होते होते 15 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कार्यालय में जो कुकृत्य हुआ उसको भी हमने देखा. हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया. कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो. जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी. तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था. मगर 19 अगस्त 2026, आज से कुछ दिनों पहले, सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो, यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे बिना जाने केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योच्छावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875, जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है 1975 में, देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है। उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में, हम 100 साल मना नहीं पा रहे हैं। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है, शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों, क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया, और उसके पश्चात 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ, जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं, हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी। मगर यही तुष्टिकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट विच वॉज सोड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1937 वॉज द सीड ऑफ पार्टीशन, यह विभाजन का बीज बनता है। और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी ऑन वंदे मातरम, नो मैटर व्हाट इट्स सोर्स वाज एंड हाउ एंड व्हेन इट वाज कंपोज्ड, इट हैज बिकम अ मोस्ट पावरफुल बैटल क्राई अमंग हिंदूज एंड मुसलमान्स ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पार्टीशन डेज। इट वाज एंटी इंपीरियलिस्टिक क्राई एज अ लैड व्हेन आई न्यू नथिंग ऑफ आनंद मठ और इवन बंकिम इट्स इमोर्टल ऑथर। वंदे मातरम हैड ग्रिप्ड मी एंड व्हेन आई हर्ड इट संग इट It had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. Gandhi ji ne kaha, dukhad din aa gaye hain. Uske aage bhi pad deta hoon ek sentence Gandhi ji ka. And that was all pure gold. That was all. Wo che chand. That was all pure gold. Before has become base metal today. Jo pehle pure gold tha, ab wo base metal ban gaya hai. Yah Gandhi ji ka manna tha. Aur aaj Congress party ne jaan bujh kar तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। टू नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था, पुनः यह जो कोशिश की गई है इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना ही नहीं, इस बार मानसून सत्र में आप सबको पता है मानसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, नन अदर देन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जनगणमन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और दोनों को एक समान सम्मान प्राप्त होगा। दिस इज व्हाट ही डिक्लेयर्ड ऑन 24th of January 1950, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष। और उसके पश्चात धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम सांसदों को जिन्होंने खड़े होकर एकमत होकर कहा कि हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और नेशनल ऑनर को इंसल्ट नहीं होने देंगे, जनगण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे। हां, किसी को बाध्य नहीं करेंगे, मगर जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा। आप चिंता करिए किस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई वंदे मातरम को, वह अभी कांग्रेस के मुख्यालय में। आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या CWC बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा या फिर CWC की कमिटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को, कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है। जिस समय कानून पारित हो रहा होता है आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं, और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। हां, हम जानते हैं, हम जानते हैं, इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम संपूर्ण रूप से गाया करते थे, 1938 पे हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि आप संपूर्ण वंदे मातरम का पठन अलाउ नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी के सामने मना कर दिया। और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो उस समय चेन्नई में होटल वुडलैंड में मौजूद थे, उन्हें फोन किया और उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप वंदे मातरम गाइए ऑल इंडिया रेडियो में 6:30 बजे। उन्होंने कहा एक ही शर्त में गाऊंगा, अगर पूरा वंदे मातरम गाने का मुझे अनुमति मिलेगा। पूरा वंदे मातरम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 15 अगस्त 1947 को गाया। कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर मत विभाजन है। सी राजगोपालाचारी जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आज हमारे रिजोल्यूशन में वो अंकित है कि इस प्रकार से अगर जिन्ना की हर बात को मान ली जाएगी, इस प्रकार से अगर अपीजमेंट की हर बात को, तुष्टिकरण की हर बात को मान ली जाएगी और घुटने टेक दिए जाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब देश सही दिशा में नहीं बढ़ेगा। और आज भी, आज इस प्रस्ताव में, आज इस रिजोल्यूशन में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पहली पदाधिकारी की बैठक में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राय कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे और जनता को दिखाएंगे कि आखिरकार ये जो कहावत है कि अगर सियार भी कभी बाघ या सिंह का चमड़ा धारण करके अपने आप को सिंह दिखाने की कोशिश करता है, एक ना एक दिन दैट स्किन फॉल्स अपार्ट, एक ना एक दिन उसके अंदर की असलियत सामने आ ही जाती है। राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस पार्टी आखिर अपने आप को कब तक छुपाए रखेगी? आज राष्ट्रभक्ति का लबादा पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के ऊपर से गिर चुका है और उसके अंदर की तुष्टिकरण की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी यह होने नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे विषयों पर, यह क्योंकि पहला रेजोल्यूशन था, इस विषय पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सभी विषयों पर आपको समय समय पर सूचित किया जाएगा और आप भी जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: So viewers, we do see the continuation of the entire controversy around Vande Mataram. Remember, just a little while back, we were telling you how the BJP has come out to pass a resolution against the entire two renditions, the two stanza rendition of the Congress that they've adopted in their CWC meeting dated 19th August, just a few days back. So this has only added more fuel to the fire. It started from the Independence Day and it still continues to widen with attacks, claims, counterclaims only mounting with each passing day. This was BJP Sambit Patra, who came out to speak on the same matter, keep the BJP resolution to the public as to what is it that the BJP has decided. Vande resound for a developed India 2047. Of course, this government's vision is for a Viksit Bharat for 2047. So they've brought in the Vande Mataram, the full rendition of Vande Mataram as the national song within that very ambit, while he's also cited what Mahatma Gandhi had come out to say when he had described Vande Mataram as an anti-colonial battle cry during our freedom struggle. So a lot has been said by the BJP in this entire press conference itself, putting forward their points of passing the resolution. And on that very note, viewers, we will be wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today's news and updates continue on the other side. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
2: You are watching India Today.

सूत्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितनी कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना इस प्रकार का आदेश दिया गया है। उनका ही रजिस्ट्रेशन करके उनको ही वहां पर एंट्री मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कार्यक्रम होने वाला है।

0: Thank you. You're watching India Today. I'm Suesha Samant. And first up, breaking news coming in. BJP has launched a scathing attack on the Congress, condemning Congress's Vande Mataram second stanza decision. BJP has opposed the CWC's 1937 resolution on Vande Mataram, where BJP has said that Vande symbol is of national consciousness. BJP has said that there can be no compromise on the honour of Vande Mataram, where BJP has accused the Congress of vote bank politics yet again over Vande Mataram. BJP has recalled Mahatma Gandhi's description of Vande Mataram. BJP is saying that Vande was mantra for freedom struggle. Also saying that one can't reduce Vande legacy to vote bank politics is what the BJP is now accusing the Congress of. Also adding that Vande Mataram echoed as a call for freedom. BJP has said that there can be no compromise with the honour of Vande Mataram. The BJP now strengthening its resolve. Listen in.
1: Aaj punah कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद सीडब्ल्यूसी में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से ये कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी, तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था। मगर 19 अगस्त 2026, आज से कुछ दिनों पहले, सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे।
0: एंड बीजेपी नाउ एस्केलेटिंग दैट अटैक अगेंस्ट द कांग्रेस, सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट डिवाइसिव माइंडसेट। यू वुड रिमेंबर जस्ट 2 days अगो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड यूज्ड द वेरी सेम टर्म for the Congress, saying that all they are doing is resorting to vote bank politics. BJP once again condemning Congress's decision that has been taken on to sing only the first 2 stanzas of Vande Mataram. What happened at the CWC, where the BJP has opposed the CWC's 1937 resolution on Vande Mataram, saying that Vande Mataram is a symbol of national consciousness and there can be no compromise on the honour of Vande Mataram. Let me take this to my colleague Sushant Mehra now joining us on the broadcast. Sushant, kisi bhi tarah se BJP piche nahi hat rahi hai, rather वो इस अटैक को एस्केलेट कर रहे हैं कांग्रेस के अगेंस्ट। पहले पार्टीशन माइंडसेट कहा गया, अपीजमेंट कहा गया, और अब कह रहे हैं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है।
2: देखिए, जिस तरीके से आज बीजेपी के प्रदेश के जो इसके साथ साथ पदाधिकारियों की बैठक हुई, देश भर के पदाधिकारियों के नितिन नवीन ने के साथ, उसमें ये पहला रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया कि कांग्रेस ने जो 19 अगस्त 2026 को सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया कि वंदे मातरम के जो टोटल कुल 6 छंद हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही छंद को वो आगे जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को लेकर के अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक का विषय नहीं है बल्कि ये विभाजन का एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के अब कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में जो है वो बीजेपी जुट गई है। नई टीम के साथ आज इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा हुई, पहले ही बैठक के अंदर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, देश भर के पदाधिकारियों के साथ ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब इस पूरे मुद्दे पर ग्राउंड पर जाकर के लोगों को किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से कांग्रेस की जो मानसिकता है उसको देश के सामने रखना है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो संविधान का उल्लंघन जो है वो करती है। राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान की छोटी किताब अपनी जेब में रख के घूमते हैं, लेकिन संसद के अंदर जो संविधान जो विधेयक पास होता है चाहे वो वंदे मातरम को लेकर के हो, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करती है, और इसी को लेकर के अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुड़ गई है।
0: जी बिल्कुल सुशांत, शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। एंड हाउ द बीजेपी इज नाउ स्ट्रेटजाइजिंग एज फार एज इट्स रेजोल्यूशन ओवर वंदे मातरम इज कंसर्न, वेर दे हैव नॉट जस्ट कंडेम्ड द कांग्रेस ओवर द डिसीजन दैट वाज टेकन इन द सीडब्ल्यूसी टू सिंग द फर्स्ट टू स्टैंजास एंड नॉट द फुल रेंडिशन, बट ऑल्सो द बीजेपी इज सेइंग दैट इट इज वंदे मातरम दैट अपहोल्ड्स द ऑनर डिग्निटी एंड लेगेसी एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एनी सिटीजन एंड एनी पार्टी टू डू द सेम, reaffirming constitutional and statutory status of Vande Mataram. The BJP has rejected bid to subordinate national song to communal pressure, also saying that the Congress's resolution cannot override constitutional institutions, saying that we will expose the Congress's role in truncation of Vande Mataram. Also adding that Gandhi believed that Vande Mataram was an anti-imperialist war cry. The Congress must understand that, as they say that they will take the legacy of Vande Mataram to every corner of Bharat and will educate the youth on the complete six stanzas, that is the entire rendition of the national song, saying that there can be no compromise with the honor and legacy of Vande Mataram. And well, after a big rejig, BJP's Nitin Naveen team that held its first introductory meeting at the party headquarters. The party members were formally inducted in the presence of Nitin Naveen, followed by the full recitation of national song Vande Mataram. The newly inducted national office bearers were instructed to prioritize youth dialogue. BJP plans to launch major initiatives under this program in the days to come. A dedicated team of senior leaders from across the country will be formed for this very purpose. The meeting stressed on the need for continuous dialogue with the youth. BJP Yuva Morcha has been mobilized to set up these teams with former party office bearers also assigned to crucial role in the outreach efforts. Special emphasis is being placed on effectively reaching out to individuals between the age of 14 years and above rather. Prime Minister will also be meeting the newly inducted office bearers at the party headquarters at 7 p.m. The two-day mega meeting that focuses on strategizing for the upcoming 2027 state assembly elections, with no special attention on Uttar Pradesh and Punjab, while laying the groundwork for the 2029 Lok Sabha polls. The new team that will chalk out a nationwide plan for the Modi at 25 celebrations, along with BJP's broader organizational strategy. Yes, what exactly happened inside the meeting of this new team of the BJP? We are getting you that scoop, as it was decided that they must prioritize dialogue with the youth, launch initiatives for youth dialogue and work into this direction. Specific teams that have been formed especially to focus on dialogue with the youth and target that particular vote bank. Yuva Morcha has been mobilized for Youth Connect, and former office bearers are to be part of this program. Details just coming in of the Delhi murder horror, where wife and brothers who beat up the husband to death, the husband who got killed after a fight that happened over the child's medicine. Delhi techie Vinay, who was killed by the brother-in-law because he was a father of two kids, he was assaulted. He in fact died on the spot. Vinay was beaten to death in front of his parents. The victim Vinay and the wife had a four-year-old. In fact, they had four-year-old twins. All of this happened on camera. Watch those pictures on your screens. The wife, who left the house, returned with her brothers. Vinay's mother claimed that the dispute that broke out between the husband and the wife over applying medicine to the child. Following the argument, his wife allegedly called her brothers from her parental home. According to the family, the brothers allegedly assaulted Vinay in front of his parents, beating him to death. A shocking case that has emerged from Delhi's Nihal Vihar area, raising serious questions about family and relationships. 31-year-old Vinay, working as an IT professional and reportedly had an annual package of about 60 lakh rupees, He was married to Rekha from Budh Vihar around 3.5 years ago. They had their twins who are now 4.5 years old, a boy and a girl. Vinay's mother said that last Friday an argument broke out between Vinay and Rekha over applying medicine to their children. Rekha allegedly became angry because Vinay had spoken to her while raising his voice. That made her angry. She went and complained to her brothers. They came with her and that led to a dispute which went to the level that Vinay is no more. Watch this report.
3: इस वक्त हम लोग विनय के फ्लैट में मौजूद हैं, जो पूरा मकान है तीसरे फ्लोर पर. विनय अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहते थे, उनकी माँ नीचे रहती थी, यहीं पर खाना बनाते थे, अपना एक सेपरेट वो फ्लैट में रहते थे. और ये देखिए, ये मारपीट के निशान है, तमाम ये सबूत हैं जो यहाँ बिखरे पड़े हैं. जहां पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम आई थी, यहां से सबूत इकट्ठे किए गए थे. टूटे हुए आपको कांच के टुकड़े, चप्पल, ये सारी चीजें इस जगह पर मिलेगी जहां से तमाम सबूत इकट्ठे किए गए हैं. दरअसल पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया, तो ऐसे में उससे जुड़े तमाम सबूत पुलिस यहां पर इकट्ठा कर रही है. आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि कल जब दोनों के बीच कहा सुनी हुई छोटी सी, तो उसके बाद फैमिली के लोग रेखा ने बुला लिए, जो विनय की पत्नी थी. और जब वो लोग आए तो देखिए पानी वगैरह लेके, बताया जा रहा है कि खुद विनय उन सभी के लिए ये पानी के ग्लास लेके आए, क्योंकि रेखा के दो भाई, उनकी एक भाभी, पिता, कई सारे लोग वहां से आते हैं. बताया जा रहा है कि 6 लोग थे, तो वो लोग जब यहां पर पहुंचे तो पानी वगैरह लेके विनय खुद आए. और उसके बाद अचानक से कोई बात होती है, जिसके बाद जो रेखा के परिवार के लोग हैं उन्होंने विनय पर अटैक कर दिया. इस जगह पर आप देखिए, और विनय की मौत हो जाती है. शोरगुल होता है, मां बोली कि वो खुद यहां पर पहुंची, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन उन्हें ढकेल दिया. विनय के पिता आए बीच में, उन्हें ढकेल दिया, और विनय की पिटाई तब तक करते रहे जब तक वो पूरी तरीके से बेसुध नहीं हो गया. जब वो लोग यहां से भागे सभी लोग, तो आप लोगों ने देखा क्या कंडीशन थी विनय की?
4: विनय की तो बहुत बुरी हालत थी. विनय को तो हम संभाल ही नहीं पाए, वो तो उसी टाइम खत्म कर दिया था. थोड़े बहुत सांस चल रहे थे, वो तो उन लोगों के साथ बोलने में लग गए. मेरी बहन है, मैंने इसको दे के भेजा, मैंने कहा तू विनय को ले जा. उसने रस्ते में ही बस थोड़े थोड़े सांस चल रहे थे, रस्ते में बस मौसी मौसी बोल के उसने रस्ते में दम तोड़ दिया. वो नहीं हॉस्पिटल भी पहुंचा.
3: माँ है आपका नाम? माँ है, आप देख सकते हैं घर के अंदर माँ के सामने उनके बेटे की, 31 साल के बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी माँ के सामने. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, पुलिस ने डिटेन किया हुआ है कई लोगों को, इस पूरे मामले में डिटेन किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने हत्या और दूसरी धाराओं में कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं?
4: जुड़वा बच्चे हैं, 5 महीने के हुए हैं. अपने बच्चों की भी, उनका एड्रेस वगैरह बुद्ध बिहार बोल लो ना, कि ये बुद्ध बिहार के हैं. वो
3: कितनी दूर है यहाँ से उनका?
4: 7 किलोमीटर, आधा घंटा तो लग ही जाता है.
3: तो आप फोन करके बुलाया था आपकी बहू ने?
4: अब वो तो वो जाने फोन ही करके बुलाया होगा, या पहले से हो सकता है, पहले से छोटे मोटे तो जी मियां बीबी में हमेशा चलते रहते हैं.
3: परिवार में कई सारे लोग हैं, हम मौसी से बात करते हैं क्योंकि वही लेकर के गई थी. आप थी घर में?
5: मैं जब वो उसको नीचे लेके आ रहे थे ना, तब आई थी.
3: अच्छा.
5: सीढ़ियों में था वो, कि कोई उसको ऐसे कंधे में डाले हुए था, फिर उसको लाके इधर बाहर लेटा दिया. उसके बाद वो कह रहा मौसी मेरे को लेटा दो, मौसी मेरे को लेटा दो. फिर उसके मौसा, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों गाड़ी में उसको लेकर गए. रास्ते में वो बहुत झटपट आ रहा था, कह रहा मौसी मेरे को दिख नहीं रहा ऐसे आंखों के आगे. फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ठीक हो जाएगा. उसके बाद मैं उसके हाथ मसलने लग गई, क्योंकि ठंडे हाथ हो रहे थे उसके. धीरे धीरे वो एकदम शांत हो गया. मेरा बेटा का बोल रहा मम्मी बेहोश हो गया भैया शायद. मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के जा रहे हैं, ठीक हो जाए. डॉक्टर के पहुंचे तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, देखते ही मना कर दिया. छोटा सा ना वो, इतना हमारा वही सहारा था हमारा, उसको आप सजा दिलवा दो.
0: And we are now getting you details of the Yogi government cracking down on sugar black marketing. Yes, action that is being taken against sugar hoarding and overpricing. Yogi government reviewing sugar availability, issuing a diktat to the same. UP government saying that 179 lakh quintals of sugar stock is very much available. 150 lakh quintals have been stocked in private sugar mills. No sugar hoarding can be done for the next 30 days. Such are the stocks that are already available. Dealers with 400 tons are to face strict action. 3,217 crore rupees sugarcane payments that have been released to 48 lakh farmers is the diktat coming in from the Yogi government over sugar hoarding, where the Yogi government is now making it very clear that any sort of black marketing will face strict action that will be taken against sugar hoarding and overpricing if that is observed. Yogi himself reviewing sugar availability as the Yogi government has issued a strong diktat to this effect. But UP government saying that 179 lakh quintals of sugar stock that is very much available, 150 lakh quintals that has been stocked in private sugar mills. And those are official numbers that are being put out by the UP government to not just assure the public to say that there should be no sugar hoarding, but also putting out a straight message to all the intermediaries to say that there can be no sugar hoarding for over 30 days. The stocks are enough. And dealers with 400 tons of sugar may face strict action. 3,217 crore rupees of sugarcane payments have been released to 48 lakh farmers is what the Yogi government is confirming. Santosh Sharma joining us on the broadcast. Santosh, UP Sarkar is mamle par kya keh rahi hai?
6: इस तरीके से चीनी की उपलब्धता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करके स्पष्ट कहा कि चीनी की कालाबाजारी किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और 30 डेज से ज्यादा कोई भी चीनी के स्टॉक को रोक नहीं सकता, यानी ब्लैक मार्केटिंग के लिए सीधे निर्देश दिए गए हैं। वहीं 30 डेज की लिमिट बनाई गई है कि 30 डेज तक ही कोई स्टॉक रोका जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कोई भी डीलर है वो 400 टन यानी डेज 30 दिन और 400 टन से ज्यादा चीनी नहीं रोक पाएगा। तो स्टॉक के ऊपर डेज के ऊपर कि ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा माल नहीं, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग ऐसा करेंगे उन पर एस्मा लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज होगी। वहीं दूसरी तरफ चीनी की उपलब्धता पर भी कहा है कि निगम चीनी मिलों में जहां 5.28 लाख क्विंटल का स्टॉक है, प्राइवेट चीनी मिल्स में 150 लाख क्विंटल से ज्यादा का स्टॉक है, गवर्नमेंट के चीनी मिल्स में 23 लाख क्विंटल से ज्यादा का स्टॉक है, यानी कि यूपी में चीनी का स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ब्लैक मार्केटिंग और स्टॉकिंग करने के लिए जो लोग BSA पर आ जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाए। जी
0: जी संतोष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। Shifting focus down south, where a big organizational shakeup is expected to happen within the DMK. Stalin has announced that DMK is now undergoing an organizational rehaul. Acknowledging the party's role in the poll defeat in Tamil Nadu, Stalin has said that first we must acknowledge our mistakes. DMK is all set to introduce age limits, terms for key forces, what Stalin has said. He's also added that more responsibilities will be awarded to newcomers, such that there is a connect with the youth. DMK is all set to launch fresh membership drive soon. Stalin has called for honest and genuine membership process. DMK is all set to hold internal party polls at all levels. Stalin has said that those who are elected, not appointed, will perform better. And he said that reforms are needed in and out to regain political success back for the DMK. Stalin has called for swift implementation of these reforms that they have come up with. Stalin has also said that no victory can be possible unless and until any party or organization is prepared for change, and that is what the DMK will now do. DMK chief Stalin, who said that even one functionary's mistake can hurt the legacy of the 75-year-old party, and he said that there is a change in mindset that is now required before the party, as restructuring is the need of the hour for the DMK. That's the announcement that has been made by Stalin as he sent out this message from top to bottom, not just within the DMK but even across the state of Tamil Nadu. to invite the youth to be part of the party, to say that now it will be meritorious and those who are truly willing to bring about changes and have bright ideas will be part of the DMK, as he's announced a big organizational shake-up to this effect. Let me take this to my colleague Anagha, joining us on the broadcast. Anagha, admission of how they've lost and now working towards reinventing themselves. What's the plan, really?
7: Well, in fact, after the big rout that DMK suffered in the assembly elections, there was a major party overhaul that that was collectively decided to be taken. In fact, it was the DMK IT wing that was specifically pulled up, because many had alleged that the DMK IT wing had indulged in cyberbullying, trolling, abusing, harassment. For anybody who criticized DMK, there it was, the DMK IT wing on social media to criticize and to bully those who were doing that. And therefore, after facing major backlashes, when the DMK High Command has now decided to restructure the whole organization to make sure that particularly the age limit and the terms of office is now reduced. So therefore, for a branch secretary, the age limit is now capped to 45 years. And that too, for all of the secretary positions, the maximum terms of office is now only for 2 years, only for two terms. Now, that largely democratizes the process and makes sure that everybody in the party gets an opportunity. They're actually taking a cue from what the TVK has been able to do. The TVK has made sure that a lot of young blood, a lot of younger faces are brought to the front line. And that's exactly what the DMK is also at the moment trying to push in a lot of faces and to cap the age limit.
0: Anagha, we wait and watch how they implement this and what exactly is the effect of it thereafter. I want to thank you for getting us those details. On that note, it is time for us to submit to a very short commercial break. We'll be back on the other side. Do stay tuned to India Today.
8: Are watching India Today.
9: टिमको से मेरा नाता सालों पुराना है. ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
10: ये है एक लेगेसी. मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
11: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां.
12: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF.
13: अब मैं क्या ही बोलूं?
14: परिवार, अटूट भरोसा,

आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था, और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है।

0: आज आपकी फ्लाइट सुखद रही होगी।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: Hello and welcome. You're watching India Today. I'm Suesha Sound. We begin with the top headlines we're tracking for you this hour. BJP's Naveen team holds its first meet after big rejig. Party President Nitin Naveen chairs session. New team to chalk out nationwide plan for Modi at 25 celebrations along with BJP's broader organizational strategy. Prime Minister Modi to meet new office bearers at 7 p.m. today. BJP passes key resolution on national song Vande Mataram, opposes Congress's resolution to limit singing of Vande Mataram to only its first two stanzas at Congress events, says Vande Mataram can't be confined to arithmetic or contemporary vote bank politics.
3: Congress party ne jaan boojh kar tushtikaran ki rajniti ko badhaya hai. Yeh koi rajnitik vishay nahi hai. हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले। खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़।
2: राहुल गांधी arrives in Pune for his छात्रों की गूंज कैंपेन, set to address students and youngsters. BJP accuses Congress of paid PR. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis says event is a one-sided conversation. छात्रों की गूंज इन पुणे बट इन JMM कांग्रेस रूल्ड रांची प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू बर्न झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन एफईजी अलेजिंग असॉल्ट बाय JMM गूंज स्टूडेंट्स वर सीकिंग जस्टिस अगेंस्ट एग्जाम फ्रॉड।
4: हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना, हम लोग दे नहीं रहे थे तो हम पे झोपड़ा लगाया गया। इतने प्रशासन के बाद भी हम लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पे।
2: Tremors in Bar Council in the aftermath of controversial Nalsar diktat. BCI co-chairman writes to Council Chief Manan Kumar Mishra seeking his resignation and flags irregularities worth 150 crore rupees.

0: here, and it is our promise that we will continue to deliver value and variety to our customers.
1: Put your hands together for Nikon.
2: तो हमारे पास फिल्म स्टार को देने के पैसे नहीं थे और ना हमें लगता है ज़रूरी कि फिल्म स्टार को पैसे देने चाहिए. हमने हमारे लिए हमारे सुपरस्टार फिल्म स्टार हमारे कस्टमर्स ही है. तो हम उतरे सड़कों पे, हम मार्केट में गए, हमने वहाँ जाकर हर कस्टमर के ऊपर डेमो किया, वही शूट करके हमने इंटरनेट पर डाला, वहाँ से हमको कस्टमर्स का ट्रस्ट मिला. वो दिन है, आज का दिन है, हमें कभी वापस मुड़कर देखना नहीं पड़ा. इतना कस्टमर का प्यार, इन जस्ट 12 मंथ्स 12 लाख प्लस कस्टमर्स जॉइन हैंड्स विद अस, दे सपोर्टेड अस. हमने सिर्फ कस्टमर का ट्रस्ट चेज किया, लाइव पब्लिक में जाकर प्रूफ दिया, कोई भी एडिटिंग वाले एड्स नहीं चलाए. वो रीजन है, दैट इज द रियल रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ Nikon इन जस्ट 13 मंथ्स दैट वेयर वी आर, एंड वी आर सो प्राउड. सो आई थिंक दिस इज द सीक्रेट फॉर Nikon, दिस इज द लाइक द लॉजिक बिहाइंड व्हाई वी आर सो सक्सेसफुल और वी हैव स्टार्टेड टू बिकम सक्सेसफुल. लाइक अ लॉट ऑफ बिगर ब्रांड्स, इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सच इवेंट्स एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर अवार्ड्स, आई एम सो प्रिविलेज्ड टू बी नॉमिनेटेड अमंग्स दीज लेगेसी कंपनीज दैट Nikon इज नाउ, you know, compared with such legacy brands. And this is the power of this platform, that you guys find out what is the voice of the market and you're able to pick that up and put brands like us on the podium. So it's a great event
1: for Tata Motors commercial vehicles. Let's put our hands together as a team joins us.
3: As we conclude the fifth edition of Brand of the Year 2026-27, we celebrate more than exceptional brands. We celebrate the vision, innovation, and leadership shaping tomorrow's marketplace. Congratulations to all the brands for setting new benchmarks and inspiring the future of branding in India. Until we meet again, this is Brand of the Year 2026-27, presented by Team Marksmen and televised on India Today.

आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था, और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है।

0: यही तो है नया राजस्थान। इस मिट्टी की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर दिल में बसता है एक विकसित राजस्थान का सपना। ये है नई रफ्तार अटल विश्वास की, नई रफ्तार विकसित भविष्य की, नई रफ्तार उस राजस्थान की जो अपने दृढ़ संकल्पों को विकास की नई पहचान में बदल रहा है। और इस बदलाव की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में। भारत ने आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक उत्कर्ष को अपना राष्ट्रीय संकल्प बनाया और भजन लाल सरकार के नेतृत्व में राजस्थान आज नए आत्मविश्वास के साथ इस संकल्प को अपनी धरती पर साकार कर रहा है। सपनों को मिल रही है नई उड़ान, किसानों को नई ताकत, युवाओं को नए अवसर और उद्योगों को नई दिशा। जब सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट ने पूरे विश्व को हिला दिया, तब राजस्थान अडिग रहा और इसी धरती से देश को मिली HRRL ग्रीन फील्ड रिफाइनरी, आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा शक्ति की नई पहचान। रिफाइनरी हो या जयपुर मेट्रो, यमुना जल परियोजना हो या प्रदेश भर में जारी विकास कार्य, राजस्थान का हर कदम एक विकसित भविष्य की ओर। आज हर निर्णय, हर प्रयास, हर उपलब्धि बयां कर रही है नए राजस्थान की कहानी।
1: आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है।
2: You are watching India Today.

एक तो डायरेक्ट है, मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ जर्नीज आर देयर. फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज बिफोर दे आर बॉर्न, पैदा होने से पहले

0: First thing to understand is before they are born, paida hone se pehle, har saal 4.5 lakh ladkiyon ki hatya hoti hai. That is the first violence, pehli hinsa. Dusri hinsa, harassment. Is bheed mein se 80% ladkiyon ko kahin na kahin harass kiya gaya hai. Right? Sadak pe, bus pe, restaurant mein, school mein, college mein 80% mahilaon ko harassment kiya jata hai. Takriban 30% mahilaon par physical violence hoti hai. Ghar mein, sadak pe mara jata hai, dhamkaya jata hai, peeta jata hai. Aur final aankda, unbelievable, 100 mein se 6 mahilaon ko Hindustan mein rape kiya jata hai. 100 mein se 6 mahilaon ko Hindustan mein rape kiya jata hai. Ye hui direct physical violence. Violence of opportunity. 50% mahila education ya kaam ko reject karti hai safety ke karan. Hinsa se bachne ke liye 50% mahila education band kar deti hai ya phir job chhod deti hai. Aur aakhri financial hinsa kyun? Kyunki agar aap ek mahila ho, average Hindustan ki mahila ko har saal safety pe 17,500 rupaye extra kharch karne padte hain. Zyada kitna zyada? Iska double. To teen tarike ke hinsa hain. Ek to direct hinsa, ek financial hinsa aur ek opportunity ka karan. To pehla entrapment hai hinsa. Ab aapki sunenge. Welcome. What's your name?
1: Tejaswini.
0: Namaskar. Kaise? Naam?
1: Suchitra. Maitri. Huh? Maitri.
0: Bata, who would like to start? Aap shuru karengi? Boliye. Beech mein aaiye.
1: Hello everyone. Hello sir.
0: Hello.
1: Mera naam Suchitra Pagi hai. Main Palghar Vasai se belong karti hu. Aur abhi main economics mein masters kar rahi hu Hadapsar mein SM Joshi College mein. Jab hum security ki baat karte hain ladkiyon ki to khud ke sath hona aur dusron ke sath hona bahut alag cheez hai. Usme zameen aasman farak hai. Jab hum padhte hain ki newspaper mein padhte hain ki ladki ke sath ladki harassed hui, uska rape hua, to wo bahut alag baat hoti hai ki hum sirf feel karte hain ki uske sath ye hua to wo kya feel kar rahi hogi. Jab khud ke sath hota hai to ek dar paida hota hai man mein ki nahi yaar ladkon se baat nahi karni, ladke bahut scary hote hain. To meri 15 saal purani ek story hai. Jab main 13 year ki thi, sirf 8vi kaksha mein thi, तो क्या हुआ मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी. तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे. लिटरली वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था.
0: तो कितने थे वो?
1: 3 लोग थे. और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो लड़के.
0: आप जानते थे उनको?
1: नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे. तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा. लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाने के लिए आ रहे थे. तो मैं बहुत ज्यादा डर

0: गई कि ये क्या हो रहा है. तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं भाग गई. तो मैंने अपने पापा से कहा.
1: आपकी फ्रेंड भी भाग गई?
0: हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई. तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ. तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे. तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मम्मी को लेके जाओ. तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई.
1: क्यों क्यों?
0: क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता. तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं. तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली. उनको बहुत मारा गया, पीटा गया.
1: उनको मारा?
0: हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया. उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई. तो
1: चली गई.
0: हाँ, तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा. और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा. और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो. तो मैं 2022 में पुणे में आई. तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी. तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया. और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था. तो लिटरली उस लड़के ने मेरी कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा. और मैं डर गई. मैंने तुरंत मैं पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया. और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली. और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई. पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने. तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा. वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला. मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो अपने बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है. तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों भाइयों, प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज सपोर्ट करो और उसको बचाओ. मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए. और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से. मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से बट सारे लड़के ऐसे नहीं होते.
1: नहीं होते ना.
0: थैंक यू.
2: मेरा नाम तेजस्विनी है. मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी सेकंड ईयर में हूँ. मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ. हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है. मैं आफ्टर 10 जब पुणे आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया, कुछ रिश्तेदार घर वाले मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे. पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो आप शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूंगी. तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ. मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी, तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ, तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सिस्ट सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है. तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूंगी तो भी क्या करूंगी, क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनेगार थे उनको क्लीन चिट दे दी, तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। और मुझे और एक बात कहनी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा गांव से आती हूँ, तो मैंने अपने टेंथ की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, जो कि अभी 90,000 के ऊपर स्कूल बंद हुए हैं, और मेरी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वही स्कूल में पढ़ती है, और उनका अभी वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजेगी। मेरा 10th का हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या होगा। तो मेरी बस इतना ही कहना है।
3: Hi, my name is Maitri. I am currently a psychology student studying in Pune University. And I travel by daily commute, by public transportation, literally almost every single day. And I feel like safety is becoming a very big concern, because you are, I leave early and return late, home late. So it becomes a very...
1: What time
3: do you leave? I leave around 8 a.m. and I come home around 9:30 p.m. That is very late for where I live. Yeah. So I feel... I coming from an urban city is very probably, I don't have to give up my education because of my safety. But the girls from the rural area region have to, their parents prefer that if they have to send their female children out to study, because villages don't really have schools for higher education. They prefer their son goes outside instead of their daughters, because it is really safe. And I feel if... education, the access to education has to become so difficult. I think it is becoming a barrier for education.
1: Why do you think this mindset, ये जो mindset है कि बेटे को educate करना है, बेटी को educate नहीं करना है, बेटा job कर सकता है, बेटी को job नहीं करना है, ये mindset आता कहाँ से?
3: आई थिंक द सोशल नॉर्म्स क्रिएटेड अराउंड कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या?
1: ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट, अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है, 60% हमारी जो लड़कियां हैं, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती हैं। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, 45% शादी के लिए या हाउसवर्क के लिए, 45% शादी या हाउसवर्क के लिए ड्रॉप आउट करती हैं। और आखिरी, जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है, और इससे तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल, मूवमेंट पे कंट्रोल, और आप क्या करोगे उस पे कंट्रोल। नमस्कार, हेलो, व्हाट्स योर नेम?
4: माय नेम इज प्रज्ञा।
2: निशा,
1: वेलकम।
5: हो
1: ये कैसे?
5: I'm a translator. I'm Anushka, and my name is Anushka, and I'm translator for Nisha. Yeah.
1: So, कौन शुरू करेगा? आप करेंगे? बोलिए।
4: So, नमस्ते सर।
1: आपको कंट्रोल कैसे किया जाता है? Financially कंट्रोल कैसे किया जाता है? Movement में कंट्रोल कैसे किया जाता है?
4: So, नमस्ते सर, एंड हेलो एवरीवन। My name is Pradnya Kumar Gavande and I am the student of SY BSc Cyber and Digital Science. So sir, हम सब समझ रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी AI पर डिपेंड है और साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड है. तो मुझे पहले से ही साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करना था, बट ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है और पुणे के रेपुटेटेड कॉलेज की फीस अराउंड 3 लाख मतलब एनुअल फीस है सर ये, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. मेरे पापा ड्राइवर है और मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, मुझे एक छोटी बहन भी है. और इसके अलावा मैं बच्चों को इवनिंग ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती हूँ. क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट में काम करती हूँ, जिससे मेरा ट्रैवलिंग वगैरह मैनेज हो जाता है. तो मैंने मेरा डिसीजन चेंज करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप के साथ नहीं मिल रहा था. तो मैंने दूसरा कोर्स ले लिया, साइबर एंड डिजिटल साइंस. सो सर, मैं क्विक हिल फाउंडेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस करती हूँ और मुझे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये समझ आ रही है, महिलाओं की प्रॉब्लम्स ये समझ में आ रही है कि AI के द्वारा उनके फोटोज बहुत अश्लील मतलब वे से एडिट करके उनको डिमांड की जा रही है कि अगर आप मुझे इतने इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दूंगा. और इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी जो वॉरियर्स जो साइबर वाले हैं उनके पास है. और ऐसे कोर्स को हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है, और स्कॉलरशिप नहीं है तो गवर्नमेंट में ये कोर्स क्यों नहीं है. और ठीक है, अगर हम लड़कियां ये वर्किंग हो के सीख रहे हैं तो फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने बजे घर क्यों आ रही हो, कॉलेज के अलावा आप इधर उधर क्यों घूम रही हो, इतने बजे इसका कॉल क्यों आ रहा है, बाहर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ, या फिर और कुछ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये मत
1: पहनो. मम्मी पापा कहते हैं, कौन कहते हैं आपको?
4: एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर. वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है और वो भी सोसाइटी के प्रेशर के अंडर. अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है तो हम करियर पर या फिर हमारे जो स्टडीज पर कैसे फोकस कर सकते. और दूसरी बात ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये सब रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है अगर मैंने माना कि ये हमारे सेफ्टी के लिए है, बट ये तो डायरेक्टली हमारे फ्रीडम पर वार हो रहा है. मैं नहीं चाहती कि मुझे एक स्पेशल फेवर वगैरह मिले, बस मुझे एक फेयर चांस चाहिए सीखने का और खुद के पैरों पर खड़े होने का. थैंक यू सर.
1: थैंक यू.
6: मेरा नाम शेख आमना उसामा है. मैं SY BA में हूँ. पॉलिटिकल साइंस है मेरा मेजर सब्जेक्ट. मैं भिवंडी से आती हूँ और मैंने देखा है भिवंडी में नॉट ऑल बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियाँ हैं. उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी. उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू इन्जॉय द पैट्रियार्की एंड कंट्रोल ओवर देम. उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और पुणे पढ़ने के लिए भेजा. पुणे में मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियाँ इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं. तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है. सेकेंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज़्यादा फुल है, हद से ज़्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई पैर टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है. इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है. मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं. मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है. तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियाँ अनसेफ फील कर रही है तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए. अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखें तो प्लीज़ उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते.
7: हेलो राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात है, ये है कि मैं जो मांजरी में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो हमारे मेरे भाई बहन जो अनशनपन बैठे है वहाँ से मैं आई हूँ. तो मुझे
1: कहाँ बैठे हैं?
7: मांजरी में, पुणे में ही.
1: अच्छा, और क्या कारण क्या है?
7: जो हमारी मांगे है वो है, वो इसमें लाई है, मैं आपको आगे
1: बोलो.
7: तो हमारी मांग है कि हमें शिक्षा चाहिए, और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है. इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी. जो आम्ही जे उपासनासाठी बसलेलो आहोत, आमचे भाऊ आणि त्याच्यामध्ये आमच्या दोन बहिणी देखील बसलेल्या आहेत, आणि त्यातलीच एका बहिणीची तब्येत खूप नाजूक झाली, तिला आज हॉस्पिटलमध्ये नेलंय. आणि हे सगळं असताना देखील जेव्हा आमचे प्रतिनिधी मंत्रालयामध्ये गेले, तर तेव्हा जे आमचे जे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आहेत ते काय बोलले असतील तुम्हाला सांगितलं तर तुमच्या अंगावर काटा येईल. ते म्हणतात सॉरी मी याच्यावर काही करू शकत नाही, हे सीएम चाहतात ते. मग तुम्ही जर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी तिथं बसलेत, तर तुम्ही जर तिथं आमच्या विकासासाठी बसलेत आणि तुम्ही जर आमचा विकास साधू शकत नाही तर तुमचा तिथं बसण्याचा अधिकार नाही, हे मी आज ठणकावून सांगते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी अजून एक सांगेल की ज्या आमच्या भागामध्ये ज्या आश्रमशाळा असतात तिथं जे सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली, जसं की एका ठिकाणी जेवण बनणार आणि ते 70-80 किलोमीटर लांब घेऊन जाणार, आणि त्यामुळे ते जेवण खराब होतं, त्यामुळे विषबाधा होते. आणि विद्यार्थी आताच एक गोष्ट झाली गडचिरोलीमध्ये, कारण आदिवासी ज्या आश्रमशाळा आहेत त्याच्यामध्ये बेडची सुविधा नाही आहे, पिण्याचं पाणी देखील नाही आहे. त्याच कारणामुळे गडचिरोलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी झोपेत असताना त्यांना मण्यार सापाने दंश करून 3 विद्यार्थी मेले आणि 3 विद्यार्थी अजूनही हॉस्पिटलमध्ये आहेत. तर आमची मागणी अशी आहे की त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ॲटलीस्ट 1 कोटीची तरी मदत करा, आणि ह्या सरकारने त्यांची मदत 4 लाखांवर मोजलेली आहे. तसंच आमचं त्यांना एक म्हणजे मागणं आहे की ज्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थिनी असतात, तुम्ही जर पाहिलं ते जे आदिवासी हॉस्टेल आहेत ते जे शहर आहेत जसं की पुणे मुंबई, तर जे पुण्याचा जो सेंट्रल भाग आहे तिथं नाही आहेत. मांजरी कोंढवा और इस वजह से जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते वो पढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते. तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय. तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी तुम्हाला जे आता निवेदन दिलं आहे त्याचा विचार करून तुम्ही आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करून आमचा मागणं सोडवण्याचा प्रयत्न कराल. थँक्यू.
6: ओके, इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपके लिए लाए हैं. तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, और आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं.
1: क्या मेन डिमांड क्या है
6: इनका? डिमांड एक बार प्लीज आप फिर से क्योंकि
7: जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम मुझे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं.
6: और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है, आफ्टर दैट.
1: ये सरकारी हॉस्टल है?
7: हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है.
6: और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए, और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं.
1: अच्छा.
6: हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर?
1: और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए?
7: ज्यादातर म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी
5: 35 इयर्स तक हॉस्टेल मिळणार चाहिए.
1: 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी.
7: वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हमें चाहते कम से कम ये 35 इयर्स तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला. लेकिन हम
1: मुझे जो आप मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते?
7: हमने आप
1: मुझे वहाँ बुला लो.
7: यस,
1: मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ.
7: आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथे आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथे यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा.
5: वो चाहती है की आप वहां पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है.
1: मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा.
7: ठीक है, मैं
1: थोड़ा थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे.
7: मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे. जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते ज्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती, वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगा वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते वो नहीं जा पाते. तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और एक महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए. और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, और हम जब इस बात पे आवाज उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको एक महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है. मैं कहना चाहूंगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको एक महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आप जो आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम छाया है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते. थैंक यू.
1: थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा. ठीक है, थैंक यू. तो डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं, लोग क्या कहेंगे. पहली स्लाइड में हमने आपको फिजिकल वायलेंस की बात बताई, रेप की बात बताई, हिंसा की बात बताई, मगर शर्म के कारण 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस, ये अनरिपोर्टेड जाते हैं. तो वो जो 6% का आंकड़ा है वो एक्चुअली सच्चा आंकड़ा नहीं है, सच्चा आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है, मगर शर्म के कारण अनरिपोर्टेड जाते हैं. 84% महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है. और फाइनल सैलरीड महिलाएं जो हैं किसी भी जॉब में हिंदुस्तान में, अगर आप सैलरीड महिला हैं तो आपको 25% सैलरी पुरुषों से कम मिलती है. तो ये बात हुई डिसरिस्पेक्ट की. आखिरी आधे कमिंग, हेलो.
8: सो बिफोर वी मूव ऑन सर, देयर इज समवन वेरी वेरी स्पेशल हु इज जॉइनिंग अस हियर.
1: ओके ओके.
8: एंड सर, भोजपुरी गानों से पॉलिटिकल सटायर भी करती हैं, नेहा राठौड़ जी इज हियर. सो नेहा राठौड़ जी, प्लीज जॉइन अस.
1: डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी?
9: जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं. तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है. मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियां और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो और इतना काफ़ी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं।
10: And we got across to breaking news coming in. Prime Minister Narendra Modi has tweeted about his meeting with the new BJP office bearers. The tweet that reads, and I quote, "Organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening the connect with the people. Great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team." That's the latest post that has been put out by Prime Minister Narendra Modi, who's hailed the meeting he had with the next gen BJP netas. Those are inside pictures from the BJP headquarters as the meeting goes on. Remember, 2 rounds of the meeting that have concluded and the 3rd round that is expected to happen tomorrow. Important as focused not just on the various assembly elections that are lined up, but also laying the roadmap for the 2029 Lok Sabha elections. And of course, how the BJP has taken the resolve to protect the national song and its initiatives when it comes to the outreach towards the youth. Prime Minister Narendra Modi talking about the great interaction he had with the new team of Nitin Naveen that will pave the way for the party in the future, not just in terms of the upcoming elections, but also when it comes to establishing that ground connect, especially with the youth, especially with Gen Z. Prime Minister Narendra Modi has put out this tweet about the meeting with the new BJP office bearers. He said organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. Taking this to my colleague Aishwarya Paliwal joining us on the broadcast. Aishwarya, do give us details of what was discussed as part of this meeting. Prime Minister putting out a very positive post.
11: Well, you know, we did see the Prime Minister making sure that he tells everyone that from here on, you all need to work together. You all need to work ahead with enthusiasm. That's something that has always been the focus of the Bharatiya Janata Party. What are the new ideas that, you know, one can actually infuse in the Bharatiya Janata Party is also something that was being discussed. The Prime Minister believes that with new energy, they will now be able to make sure that the upcoming elections are in favor of the BJP. Not just that, you know, Prime Minister Modi also gave examples from his own life and spoke about the fact that one does at times feel that he or she has got stuck, but it is in those times that one should remember that moving forward is what helps people, and that's exactly how people should make sure that they move forward for the betterment of the people. That should be the motto, and the Prime Minister also emphasized that that has been his motto throughout his public life, and that has been the motto of the Bharatiya Janata Party, and these are the things and the values that everyone should imbibe and should move forward with.
10: Oh yes, absolutely. But Aishwarya, if you could also give us details of how the BJP plans to approach the next few years, especially when it comes to the specific intention of reaching out to the youth.
11: You know, reaching out to the youth is something that the Bharatiya Janata Party has been contemplating over the past few days. What are the new ways through which you can reach out? Because we've seen that there is, you know, across the country from north to south, east to west, the feedback that the BJP has got is that there is unrest And there is also disenchantment of sports in a certain section of the society, especially the younger people. How do you tell the younger people the things that you have done over the past many years? What are the things in the pipeline, and how will the policies made by the government of India directly impact the young people, the students especially? That is something that the BJP has been looking at. And, you know, out of the 65 new member team, we have seen how 51 are the ones who have been inducted newly. So some of them, like Smriti Rani, have made a comeback. How to use experience, how to use, you know, the feistiness that the old guard has, and how to make sure that you match it with the new ideas, with the innovation and the new technology that is advancing. That is something that the BJP will now have to keep a very close eye on, and will also have to focus in this situation.
10: All right, Aishwarya, many thanks for getting us those details. But that is time for us to sip into a very short commercial break. We'll be back on the other side. Do stay tuned. Quick bit.
12: You are watching India Today.
13: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: very warm welcome to all of you. Being a Miss Gen Z on such a big cause. एक बार तालियों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. For coming here and choosing to be part of this. तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है. देखिए, ये आखिर ये शो हम क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा प्रदूषण की बात की है, लेकिन प्रदूषण का हल कौन बताएगा? क्या हम उस हल का उस हिस्सा बन सकते हैं? सवाल ये है कि क्यों भारत की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है? साल दर साल दिल्ली के वायु प्रदूषण का मसला टेलीविजन पर, अखबारों में, सुर्खियों में, विज्ञापनों में, हर जगह होता है. या तो पॉलिटिकल पार्टी अपना विज्ञापन देती है कि हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया, लेकिन हम सब मिलकर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम, आपकी पीढ़ी और आपके बाद आने वाली पीढ़ी भी खुश होकर रह सके, खुली हवा में सांस ले सके. तो यही हमारी कोशिश है और इसी में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को हम अधूरा छोड़ देंगे अगर हम सब इसका हिस्सा नहीं बनते हैं. आखिर इस पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है?
1: हम हर बार इसके बारे में बात करते हैं जैसे कोई नंबर है, कोई टिक मार्क है, कोई वेदर का ऐप है जो ये आ गया है, बट इसका टेंजिबल इम्पैक्ट कितना है हमारी लाइफ पर? क्या आपको पता है कि हमारी और आपकी लाइफ में से 8 साल कट गए हैं सिर्फ, हमने सिर्फ ये करा दिल्ली में और आपकी और मेरी जिंदगी के 8 साल कट गए. That's how important the issue of pollution really is. 8 years are gone just from breathing. It's the highest such loss recorded in any major city on the planet. सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ एशिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में इतना ज्यादा पोल्यूशन किसी और देश में नहीं है, किसी और सिटी में नहीं है. और हमने साल दर साल हम हर बार स्टोरीज करते हैं, हर बार हमारी रील्स वायरल होती हैं और जेन जी कहता है हाँ इस पर हमें काम करना चाहिए, पर हम हर बार आपस में भी न्यूज रूम में भी यही बातचीत कर रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. हर साल वही इशू, हर साल वही मुद्दा, हर साल वही सवाल पॉलिटिशियन से, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? विच इज वाई वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू टूडे, विच इज वाई टूडे आज तक इन इंडिया टूडे टूगेदर we've sort of gotten our forces together to bring this one issue to you. आखिरकार ये भी याद रखिए आप लोग, हाँ ताली बजा सकते हैं. Pollution एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ Gen Z को matter नहीं करता है, जो सिर्फ मुझे मैटर नहीं करता है, जो सिर्फ आप अमीर हैं या गरीब है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपका डॉक्टर कितना अच्छा है वो भी उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. पॉल्यूशन आपकी जिंदगी को बुरी तरह से बिगाड़ रहा है और इसमें अब कोई दो राय नहीं है.
0: एक वक्त था जब हम बच्चों को पढ़ाते थे कि भाई 6 ऋतुएं होती हैं, हाँ. लेकिन अब उसमें जुड़ गया है दिल्ली में पॉल्यूशन ऋतु. तो तैयारी कर लीजिए, पहले से मास्क वास्क का इंतजाम करिए, घर में छिपके रहिए, हमेशा एयर प्योरीफायर चला कर रखिए. हमारी जिंदगी बदल गई है सिर्फ इस हवा की वजह से, तो इसको बदलने का वक्त आया कि हम क्या इस हवा को बदल सकते हैं.
1: सो हियर इज व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंटली फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स. दिस इज नॉट अ स्टूडियो कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स अंजना एंड आई विल डू हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज अ वर्किंग प्रोसेस. सोल्यूशंस विल गेट पिच्ड फ्रॉम यू, दे विल गेट टेस्टेड इन द फील्ड बाय द गवर्नमेंट. द ज्यूरी विल इंस्पेक्ट इफ योर आइडिया एक्चुअली वर्क्स. And then finally, on the 2nd of October, 6 weeks from now, the Delhi Chief Minister will stand here in front of you to say, you know what, let's get this idea going. So, आपको करना क्या है? आपको बनाना है एक वीडियो, जो आप सबको मुझे पता है काफी अच्छे से आता है. आपको एक वीडियो बनाना है, आपको उस वीडियो में बताना है कि आपका सोल्यूशन क्या है. अगर आपका सोल्यूशन वर्क करता है तो हमारी ज्यूरी उसे एक्सेप्ट करेगी, उसे टेस्ट करेगी और उसके बाद एक काफी अच्छा प्राइज मनी भी है. बता दें इनको अंजना.
0: हाँ, बता दीजिए क्योंकि अच्छे अच्छों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे. इट्स अ ह्यूज अमाउंट.
1: द प्राइज मनी फॉर नॉट जस्ट वन आइडिया और टू आइडियाज बट ऑल आइडियाज दैट गेट एक्सेप्टेड बाय द ज्यूरी विल विन 50 लाख रुपीज.
0: हमने सोचा कि जब परेशानी इतनी बड़ी है तो उसमें आपको इंसेंटिव भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ताकि पूरी ताकत झोंके और ये इंश्योर करें कि हम कुछ ना कुछ दो तीन तो अच्छे सॉल्यूशंस निकालें जिससे लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो. हम सिर्फ उसकी शिकायत ना करें बल्कि कोई सॉल्यूशन भी पहुंचे. दिल्ली आपकी, सॉल्यूशन आपका. आपको बस ये QR कोड जो हम अंत में आज लॉन्च करेंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली की आने वाली है हमारे साथ यहां पर स्टेज में, वो QR कोड लॉन्च करेंगे जिसको स्कैन करके आप अपना सॉल्यूशन, अपना पिच भेज सकते हैं.
1: So are you all excited?
2: Yes.
1: You've got a solution?
2: Yes.
0: But you have time. Warriors. Huh?
1: Yeah. You've got some time. But let me tell you how exactly this is going to work. Like I explained in the beginning as well, there is already an innovation challenge that is underway. Delhi Sarkar already ye float kar chuki hai. इन्होंने दिल्ली से काफी सारे लोगों के सॉल्यूशंस मंगवाए. कुछ 200 से लगभग या 300 के लगभग सॉल्यूशंस उनके पास आए. उसमें से फिल्टर होके 22 ऑलरेडी आइडियाज फील्ड में प्लेस हो चुके हैं, मतलब टेस्टिंग फेज में पहुंच चुके हैं. तो आप सोच रहे होंगे आपका आइडिया कहां गया. आपका आइडिया है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री. द सॉल्यूशन यू सेंड, इफ दैट टिक्स, यू गेट टू क्रूज straight into that 22 list of ideas, and that will be taken to the grand jury, and then they decide who wins or who does not.
3: Good morning, India. You're listening to another beautiful day where the sun rose on time, the traffic found its jams, and the nation found another reason to scroll. Meanwhile, somewhere in the capital, AQI levels are maintained. Another day. People are breathing heavier, the students are skipping school, and the news cycle about what's wrong keeps moving. The world, on the other hand, has come up with a new statistic measuring the worldwide air quality. New Delhi, they say, stands at 63rd position. Meanwhile, the runners are skipping the run, and a new set of people, as decided, are finally migrating from Delhi for survival. Yet not everyone chose silence. Somewhere in Delhi, men, women, children, and environmentalists gathered anyway, not because they knew something's wrong, but because they believed that if air isn't fixed today, no one will be able to breathe tomorrow. Tomorrow, if there's any, maybe, the capital will vanish somewhere in this unbreathable air. This has been your bulletin for this hour, reminding you that there's a lot of work to be done, but this city will survive only when its people choose to solve it and not let governments figure it out alone. You both need each other. Delhi belongs to the people, and clean air is our right whether in power or not.

0: ऑलराइट, तो कैसे अप्लाई करना है, कहां पर जाकर अपना वीडियो भेजना है, वील वॉक यू थ्रू एवरी बिट ऑफ दैट एज द शो प्रोग्रेसेस. बट नाउ ऑन द प्रोग्राम लेट मी इनवाइट द मैन हुज ओन गवर्नमेंट्स रिपोर्ट कार्ड ऑन द इशू हैज बीन रिटन इन हेडलाइंस एंड हु हैज चोजन टू स्टैंड हियर एंड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा.
1: हेलो जी.
2: नमस्कार.
0: हेलो जी.
2: नमस्कार.
1: हमें बताते हैं, हम भी इस तरह के पहन रंग के पहन लेते हैं.
2: हमने सोचा कि आपको ऑड बना के रखना है.
1: धन्यवाद जी. जी.
2: तो सिरसा साहब, सवालों की शुरुआत करते हैं क्योंकि ये हमने ये सोचा कि हमेशा पोल्यूशन को लेकर हम सबके अंदर एक निराशा है, हम चाहते हैं सोल्यूशन निकले. तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने दो तीन ऐसे कदम, क्योंकि अब आप लोग खुद ही आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या किया है?
1: देखिए, पहले तो आपको ये सबको जानकारी है कि पोल्यूशन के तीन बड़े कारण हैं, व्हीकलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन है, और तीसरा जो हमारे इतने लैंडफिल्स लैंड साइट्स थे जिनके ऊपर इतने कूड़े के ढेरों के टनों टन कूड़ा पड़ा था और आप रोज देखते थे वो पोल्यूशन. तो दिल्ली का चैलेंज है, दिल्ली के अंदर लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों लाखों लोग यहाँ से रोज जाते हैं. दिल्ली दुनिया का अकेला ऐसा शहर है, मैं कुछ आपको जानकारी देने से पहले बताना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी, दुनिया का दिल्ली अकेला ऐसा शहर है, पूरी दुनिया का, दुनिया की अकेली ऐसी राजधानी है जिसके साथ कितने मेट्रो सिटीज के साथ और सिटीज साथ जुड़ती जाती हैं जिनका कॉमन एयर शेड है, सबको कॉमन रहने वाला है. अकेला ऐसा शहर है जो 55 किलोमीटर के इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं. ये दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जहां जितना पूरे यूरोप के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता है लगभग उतना कूड़ा रोज दिल्ली यहां से हटाता है. 14 से 15 हजार मैट्रिक टन कूड़ा केवल पूरे दिन के अंदर दिल्ली का लोकल म्यूनिसिपल वेस्ट है, और इसके अलावा जो लेगेसी वेस्ट है जो हमसे पिछले हमें देके गए हैं, कूड़े के पहाड़ बनाकर देके गए हैं, वो 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज हम हटाते हैं. 50,000 मैट्रिक टन कूड़ा अंजना जी, ये इसके बराबर है कि पूरे यूरोप का कूड़ा दिल्ली में से निकाला जा रहा हो, इसके बराबर आप कल्पना करके देखिए, फिर भी आपको कूड़े का कोई ट्रक नहीं दिखाई देता. ये मैनेजमेंट हमने आके पिछले 1.5 साल में खड़ी की है. सबसे बड़ा कारण यही है, हम जानते हैं 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से, मैं आपको बताना चाहता हूं, 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से हम 70 एकड़ से ज्यादा जमीन रिक्लेम कर चुके हैं, 70 एकड़ का कूड़ा खत्म कर चुके हैं.
2: चैलेंज बहुत बड़ा है दिल्ली के लिए, इस बात में कोई दोराय नहीं, चैलेंज है, लेकिन हम आज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं,
1: बहुत बड़ा.
2: और इस सोल्यूशन में आपको क्या लगता है कि किस तरह का पार्टिसिपेशन आप चाह रहे हैं लोगों से? हम ये कैंपेन जो कर रहे हैं इसमें हम जो लोगों से बोल रहे हैं कि वो आके अपनी एंट्रीज भेजें, आप सबसे पहले उनको क्या बताना चाहेंगे, कौन सी एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है?
1: तो देखिए, सबसे बड़ा काम जो और सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत वो है इनोवेशन के ऊपर आज, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जो 3.5 करोड़ लोग हैं ये कम होंगे, ये बढ़ेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक कम होगी और बढ़ेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़ा म्यूनिसिपल वेस्ट हमारा कम होगा, नहीं, और बढ़ने वाला है. तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी साथ में निकाल कर लाने होंगे कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कुछ भी कर रहे हों तब भी साइंस और इनोवेशन हमारी हेल्प कर रही हो उसको डायरेक्टली उसको नीचे लाने के लिए. ये ड्रास्टिक स्टेप्स जो हैं वो इनोवेशन से आ सकते हैं, जो रोजाना के काम है वो हम कर रहे हैं. लेकिन आप सुनिए, एवरेज एनुअल PM2.5 में -7.7% हो गया, -7% उसमें कमी आई है एनुअल साल का. उसी तरह एनुअल PM10 में 7.1% की कमी आई है. ये डेटा तो आपके पास रोज अभी निकाल के अभी निकल आएगा एक सेकंड में. एनुअल एवरेज एक्यूए, अगर हम एवरेज एक्यूए की बात करें पूरे साल का, तो उसमें 3.871 का कमी आई है. 3.87, ये पॉइंट से कम होने वाला, 1-1%, 2-2%, 3-3%, ऐसे ही कम होगा.
2: आज क्या बता रहा है आपका? गुड बता रहा है, बैड बता रहा है, क्या बता रहा है? जरा मैं भी अपना खोलूं, जरा देखा जाए.
1: हाँ, नहीं, कोई बात नहीं.
2: मेरा मोबाइल, आपका मोबाइल अलग
1: नहीं, मोबाइल नहीं है. देखिए, ऐसा होता है, पहले आप समझ लीजिए, AQI है ना, ये खाली रॉ नहीं आता कभी भी, ये देखिए रोज का आता है. अभी का एग्जैक्ट कितना है? 108.
2: हाँ.
1: ये कितने बजे का आ रहा है? 4:06 पे. तो ऐसा
2: ये भी
1: होता
2: पुअर
1: है,
2: जी, ये भी WHO का तो 50 होना चाहिए. ये भी पुअर है,
1: लेकिन
2: 50 होना चाहिए. और ये थिक ऑफ मॉनसून है, इस समय तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए समय। हाँ।
1: मैं
2: आपसे यही कहना चाह रही
1: थी, मेरे पास रोज का आता है, मैंने ये नहीं कहा कि रोज अच्छा आता है,
3: मैंने बस क्रॉस चेक किया कि आपका हमारा सेम बता रहा है नहीं बता रहा।
1: साफ हवा भी कैसे आएगी? अब मैं अंजना जी ये भी लाइन आपको जरूर बताना चाहता हूँ। तो बेटा आजकल आपके पास एआई का जमाना, बिना एआई के भी गूगल में सबको अवेलेबल था, तो अभी तक साफ शहर कौन से हो पाए हैं? इंग्लैंड, क्या लंदन शहर अपनी हवा को साफ कर पाया है? चीन का बीजिंग अपने आप को साफ कर पाया है? आप पहले एक बार जाके स्टडी करिएगा कि उनको कितने साल लगे। बीजिंग को 9 साल लगे हवा को साफ करने में, 9 साल। लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का, लेकिन हमें ना 9 लगेंगे ना 15 लगेंगे। मैं
2: आपको कितने लगेंगे आप एक बता दीजिए, इसी पर रील बनेगी,
1: बने
2: इसी पर रील बनेगी, बात
1: बिल्कुल बनाएंगे, हम खुद बनाकर चलाएंगे, हम वो रील को खुद बनाकर चलाएंगे।
3: तो मैं टाइमलाइन
1: अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए पॉल्यूशन कैसे कम होगा, परसेंटेज वाइज 5%, 7%, 10% पर ऐसे होगा। शाम को हवा साफ हो जाएगी ऐसा असंभव है।
2: लेट्स टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस नाउ, लेट्स गो देयर प्लीज।
4: गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज वंशिका। Sir, I wanted to ask, like you've launched a couple of policies about EV, cloud seeding as we talked here today. मेरे को ये पूछना था, जैसे cloud seeding एक अच्छा initiative तो है, but जैसे हम सबको I think पता है कि 3 government agencies ने बोला था कि you know cloud seeding is not suitable for Delhi, उसके environment वगैरह के हिसाब से, फिर भी इतना बड़ा budget, as you said 3 crore रुपए उसको allot किया गया, इतना बड़ा budget, so do you think it was the right move and क्या measures हो रहे हैं?
1: तो देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा ये खाली दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग हो, इसके लिए बजट नहीं है। हमने पैसा एक आईआईटी कानपुर को दिया है, वो हमारे इस पैसे से स्टडी कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में एक दिन बरसात करानी पड़ सकती है और कभी भी ना करानी पड़े, लेकिन सोल्यूशन तो देश के पास होना ही चाहिए ना हर प्रॉब्लम का। तो वो दिल्ली सरकार का पैसा देश के एसेट्स में काम आए, तो दिल्ली की सरकार ने आईआईटी, वो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, तो वो जितनी रिसर्च करेंगी, चाहे पैसा आपसे आए या किसी भी सरकार से जाकर रिसर्च करेंगी, तो ये कहना गलत होगा कि पैसा कहीं उसका मिसयूज हो गया या उसको कहीं और यूज हो सकता
3: है। ठीक है, 2-3 सवाल और इधर से लेते हैं।
4: क्या हम इंडस्ट्रीज को उतना लायबल ठहरा रहे हैं जैसे उन्हें जितना उन्हें ठहराना चाहिए? क्योंकि बीट नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या हम उनको लायबल ठहरा रहे हैं? क्या हम स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं?
1: तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है अंजना जी, आपके ध्यान में भी ला दूं, दिल्ली में जो इंडस्ट्री चल रही थी अनऑथराइज्ड एरियाज में, ऐसी 12,000 इंडस्ट्रीज थी जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, हमारे डिपार्टमेंट भी नहीं पूछ रहे थे। क्यों नहीं पूछ रहे थे? वो कहते थे कि सर ये नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है और सुप्रीम कोर्ट का कहना इसको बंद कर दो, तो सिंपली बंद करो, हम इसको चेक नहीं करेंगे पोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने आकर एक कानून बनाकर उनको फोर्स किया, 12,000 इंडस्ट्री ऐसी, 12,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऐसा हमने इंस्पेक्शन की, जिनमें से 8,000 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका पोल्यूशन मापदंड ठीक किया जा सकता था, उन्होंने ठीक किया। जिनमें से 1626 ऐसी हैं जिनका ठीक ही नहीं हो सकता था, उनको सील किया, और 560 या कुछ ऐसी थी जिनमें पानी भी साथ में गंदा था हवा के साथ साथ, वो 550 को भी सील किया।
3: किस इलाके में थी
1: ये? सारी आउटर दिल्ली में, जहां पे नॉन कन्फर्मिंग एरिया की इंडस्ट्रीज थी। और इसलिए बेटा हमने अब तक तकरीबन 2200 के आसपास ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके सील किया है, बंद किया है, और 12,000 इंडस्ट्री को हमने आइडेंटिफाई किया है और 8,000 के पोल्यूशन मापन को ठीक कराने का काम किया। ये एक मैराथन जॉब था जो हमने पिछले 1.25 साल में पूरा किया।
5: हम सॉल्यूशन का सॉल्यूशन दिल्ली के सेंटर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपने बोला कि एनसीआर एक कनेक्टेड एयर शेड है, और हम अगर रोटी भी हम खाते हैं तो उसके सेंटर से नहीं लेते, हम कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो हम एनसीआर पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम दिल्ली की पेरिफेरी पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसीज क्यों नहीं ला रहे हैं, और अगर ला रहे हैं तो उनका ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रहा? सर,
1: बेटे ने सबसे अच्छी बात करी है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, और उन्होंने एग्जाम्पल भी इतना अच्छा दिया। इसके ऊपर लगातार हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो लगातार सभी स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते हैं, मैं उस सभी मीटिंग का हिस्सा होता हूं, और उस मीटिंग्स के अंदर ये पैरामीटर्स फॉर फिक्स किए गए, फ्रेमवर्क्स को फिक्स किया गया है, हमारा क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है, हर स्टेट्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या टाइमलाइंस हैं, उनको कब तक अपना कूड़ा खत्म करना है, कब तक उनको मैनुअल जो है क्लीनिंग खत्म करनी है, कैसे उन्होंने मैकेनिकल, कब तक कौन सी चीज लेकर आनी है, किस तरह से अपने स्टेट के अंदर वो ईवी को चार्जिंग स्टेशन लेके आएंगे, कैसे ईवी गाड़ियों के लिए। तो ये हमारा फ्रेमवर्क बना, इस पर काम चल रहा है, और इसकी बड़ी मॉनिटरिंग भी होती है, और लगातार निरंतर केंद्र सरकार इसके ऊपर चर्चा करती है, और लगातार इस पर बैठकें कराती है, होती है और जब बैठक होती है उसके अंदर हम अपने सारे पीपीटीज लेके जाते हैं कि जो टारगेट्स दिए थे वो मीट हुए कि नहीं हुए। हाँ लेट होते हैं टारगेट, स्टेट्स के भी लेट होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी उनसे ली जाती है और उनको आगे से कहा जाता है इस डेट तक पूरा करके दे। तो ये फ्रेमवर्क बना हुआ है, इस पर काम चल रहा है। जैसे आपने कहा टाइम लगेगा, सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन की 5-5, 3-3, 2-2, 4-4, 10-10% करके ही हम उसको ठीक कर पाएंगे।
3: अब चलते चलते आखिरी में बता दीजिए कि हमारा मकसद क्या, हम चाहते हैं बच्चे आए, नए नए इनोवेशन के साथ लोग आए, वो जरा बता दीजिए, समझा दीजिए।
2: व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मोस्ट फ्रॉम
1: दिस चैलेंज? देखिए पहले तो मैं आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अंजना जी का भी और सोनल जी का भी, क्योंकि आपने एक हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर दिल्ली को पोल्यूशन का सोल्यूशन देने की कोशिश की है। जब तक हम इस तरह से हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसका समाधान भी नहीं होगा। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सभी टीवी चैनल्स को, अखबारों को इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस हम ला सके। तो पोल्यूशन के सोल्यूशन में अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी आप एंट्री कर सकते हैं, ये आज के इस प्रोग्राम का कारण है। आप अपना सोल्यूशन लेके आए, अगर वो सोल्यूशन अप्रूव होता है तो अप्रूव हमने नहीं करना, उसके लिए भी IITs, NCLT ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एकजुट होकर, जिनका इन्होंने जजेस जिनको बनाया है वो स्टडी करेंगे, उनमें से अगर कोई कामयाब होता है तो उसको इनाम भी देंगे और उस प्रोडक्ट को हम दिल्ली के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। यह जो बड़ा काम का बेड़ा उठाया है वो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में उठाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे पोल्यूशन के सोल्यूशन के लिए हमारे नौजवानों तक पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे भी जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा जिसको दिल्ली में लाकर हम दिल्ली की हवा को और साफ कर पाएंगे।
2: ऑल राइट, ऑन दैट नोट, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर सिरसा, प्लीज एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। All right, so you heard the minister over there. Promises have been made, but it's now time to put them to test. Let's take this opportunity to introduce to you our esteemed jury, people who will be putting all the ideas you sent to us to test, ensuring that they work, ensuring that they're scalable, and at the end of the day, workable for you and me. So should we call upon them?
3: Absolutely.
2: Yeah?
3: Sir, go ahead.
2: Let me start by bringing in, and please, huge round of applause, Manendra Agarwal, Director for IIT Kanpur. He's a brilliant mathematician and also behind
3: Welcome.
2: The very, very, you know, true innovation that happened. I'm sure with him, every day on his desk, there is a file of ideas that come. But this time, we'll ensure that that file goes into a massive load of ideas and video pitches as well.
6: You're worried about that.
2: You're worried about that. But hold on to that thought, because you'll not be the only one worrying about it. There are a host of others who'll join you in this campaign as well.
3: बिल्कुल.
2: Yeah.
3: और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो चिंता करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सोल्यूशन बताते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि चिंता तो हम सब कर सकते हैं पोल्यूशन पर, लेकिन हमने किया क्या? ऐसा ही कदम उठा रही हैं एक बेहद खास ज्यूरी मेंबर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। कलीपुरी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए वाइस चेयरपर्सन इंडिया टुडे ग्रुप की, जिन्होंने ये सोचा कि हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। हम खबरें बताते हैं, हम पोल्यूशन में जो परेशानियां लोगों को हो रही है वो सब बताते हैं, लेकिन सोल्यूशन का हिस्सा बनने को तैयार है या नहीं है?
7: बिल्कुल, ऑलवेज। मैं शुद्ध दिल्ली वाली हूँ, तो I want to make sure that this is a city we all are proud of and that we are happy to live in. Because it's a beautiful green city with so much history. And the only thing that lets us down, I think, is the air.
3: Absolutely.
7: If we can fix that, we're home.
2: We're home.
3: Absolutely. Huge round of applause. Huge round of applause.
2: All right, next let me call upon stage somebody who's truly entrenched in this entire system of bringing you a solution. Let me call upon now Naresh Priyadarshini. He's from the Delhi Pollution Control Committee. Huge round of applause, please. He's seen more pollution ideas die down than that actually works. So I'm very interested to know what is it that will make it tick for him, because he's the one at the end of the day who's advising the government as well. Are you excited about this challenge, sir?
8: Absolutely, absolutely. So first of all, this is a great opportunity and I think a very positive engagement of a media group for a social cause. Yes, the ideas should be linked to the problem. I think that is very important.
2: All right, and next with us, somebody who understands the pain of pollution more than anybody else. Let me bring up on somebody who sees patients with pollution-related problems every day in her clinic. And not just people like you and me who are trying to fight out, but little voices who cannot really understand the length to which the pollution is spoiling their health. Please call upon Dr. Neela Mohan, President for Indian Academy for Pediatrics. Ma'am, you see kids every day.
6: Yeah, that's true.
2: Parents ko bhi ye bahut advice deti hongi. एंड एक एडवाइस बहुत सुनी जाती है कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ, पोल्यूशन से बचना है तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ.
6: Well, क्या
2: इस पूरे कैंपेन के बाद प्रोबेबली यू विल हैव अ डिफरेंट आंसर.
6: यस, आई विल से दैट देयर इज समबडी इंडिया टुडे एंड आज तक जब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो शायद सोल्यूशन मिल जाएगा.
2: ऑल्सो ज्वाइनिंग अस इन अ लिटिल व्हाइल विल बी कपिल देव एंड ही समबडी हु इज नॉट जस्ट अ नोन यू नो स्पोर्ट्समैन, समबडी वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ, बट समबडी हु एक्चुअली इज द ओनर ऑफ द KDSC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एज वेल, सो डीपली इन्वेस्टेड इन द मैटर. ही विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग अस इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल. With that, let's get started.
3: KP, मेरा पहला सवाल आप ही से. My first question to you: What is the genesis of this whole thing that you thought we should do this? Why?
7: I think that I just got tired of covering the news on a yearly basis. We would always start in September, October, and start talking about pollution. And I think we made a big change to say, look, we're not just going to sit there and cover it, but we're going to start being part of the solution. And that's why we've committed to finding a solution for this pollution problem in Delhi since January. And we've kept the attention and focus there. And I'm so glad that Delhi government has sort of cooperated with the push that we've given them. And they have been working on it since January as well. Because pollution, you see it more in September, October, November, but actually it's a problem even in the summer. We've got so used to it, we accept pollution of 300, 400 is completely normal. If you look at the AQI of other beautiful cities in the world, you'll see AQI 3, 2, 0. Like, okay, those are numbers that we have never seen. So our ambition should be that we can hit, you know, at least double digits on a regular basis. That would be quite good. And maybe then single sometime in the future.
3: Abhi itni barish mein to it's around 108, so like a long way to go.
2: But let me bring in also Manindra Agarwal. Sir, you know, you have seen solutions being put forward in front of you for quite some time. Every day, IITs are doing innovation. They're trying to solve for the problem. When people watching this program try to think over what is that one solution that will tick, what do you think they should be focusing on? Where do you think innovation lacks in becoming a reality?
9: Of course, the solution should work. It goes without saying. But more than that, or equally importantly, I would say, it needs to be a solution that works at scale and in a cost-effective way. If you miss any of these two, then you cannot implement the solution well. So that is the most important thing to keep in mind, whatever solution one designs. I have seen so many solutions which look very good on paper, which look very good in lab level. But the moment you take them outside to actually on the ground to deploy, they fail.
2: Right. So if I can bring in, you know, Nareshji as well. Nareshji, kitne challenges rahe pichle ek decade mein DPCC ke saamne? हमने साल भर बहुत स्टोरीज करी, आपको बहुत क्रिटिसाइज करा, बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे. वेयर डू यू गेट स्टक? व्हाई इज इट दैट द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री और परहैप्स द वर्ल्ड व्हिच इंडिया इज नोन फॉर, वी हैव नॉट परहैप्स बीन एबल टू क्रैक दैट वन थिंग दैट इंपैक्ट्स ऑल ऑफ अस?
8: फर्स्ट करेक्शन आई वुड लाइक टू से इज दैट यस, द बिगेस्ट आई थिंक ड्राइविंग फोर्स व्हिच आई सी नाउ वेयर डीपीसीसी एंड अदर सिमिलर entities within the ecosystem have been now delivering solutions is the government mindset. You can't imagine the kind of hours or the kind of push, like for example the chairman DPCC or the minister Mr. Sirsa himself or the member secretary, they even till it was 9 p.m. or 11 p.m. or whatever, they close things. Like there is so much of drive to bring the solution to a reality. I think that has been a big change, which I've seen in the last 1 year. Yes, over the years, the kind of use of technology was limited, and you know, the kind of analytics and all those things, everyone was making efforts, but somewhere, as Dr. Agarwal also mentioned, the implementability and finding the solution on the ground. We were always, I think initially the approach was measuring and reporting. Now we are moving to a solution phase. I think that change has happened.
3: Yes.
8: We are measuring, reporting, and that's why the kind of approach and the kind of solutions are now coming are real, they are not cosmetic.
3: Ma'am, because you interact with your children, you interact with their parents. What can you suggest to them? What can you suggest people? Like, everybody is checking the AQI and then they decide whether their children should go out to play or not. Ki bachcha khelne jaye, nahi jaye. Kya karein? As a doctor, aap kya batayenge?
6: Right. So, I think I totally agree. Abhi time aa gaya. Agar aap mujhe ijazat denge, to ise jan andolan banane ke liye. Jan andolan ka matlab hai ki it's not only the government and the industry, or it has to be everybody. So the doctors are also important, where I have to talk about advocacy. Jaise aap sirf ek number nahi batana hai, number ke baad kya karna hai, to mujhe bhi parents ko kya karna hai batana hai. So we need certain general tips, aur jab tak wo parent ko ye nahi samajh aayega, it's not about me, that parent should become strong enough to go and ask school mein, RWA mein, community mein, they should go around. And jab tak real story hoti hai na, to wo real story makes a big impact. Like we've seen in Punjab, jaise wo jalate hain, to it is in one of the villages, there was a real story, somebody died, pollution related burning, and he or she could communicate to the village and the whole village stopped. So the Gurdwara people were involved. So I think such stories will make a difference.
2: You know, before I say goodbye to them, because they've got a lot of work to do in the coming days, I'm sure, are you guys excited as well? Because
6: absolutely,
2: this is not just a challenge, it's a fun one. We've curated it in a way that you also get to interact with some of the brightest ideas in the country. Dr. Agarwal, are you looking forward to that?
9: Absolutely.
2: To interact with Gen Z finally?
9: Well, I interact with Gen Z day in, day out. I have 10,000 of them out on my campus, but it's always a pleasure to talk to bright young minds. So I'm looking forward to it.
2: Narishi, what are you looking forward to the most in this campaign?
8: Yeah, I think they are the best. I think the freshest ideas can come only from these people.
2: Yeah.
8: They are closer to the ground. They are facing the challenges themselves. And if they wear the hat of a solution maker, I think they can do wonders. There is no doubt about it.
2: Yeah.
8: A lot of positive energy around it.
2: Yeah.
6: I think they'll be the one who can spread it like wildfire, what you say. That is what you need, because they're all social media savvy. And just a simple message when you ask to each mother and each parent, each family, did you know a mosquito coil is equivalent to anywhere between 50 to 125 cigarettes? So please do not use mosquito coils, agarbatti, dhua, smoking, vaping at home, because bachche bhi hai ghar pe, ye sab. These are not good things to be done.
3: And KP, from being a hard task master in our editorial meetings to getting...
7: Don't tell the jury that. Yeah, the jury will run away.
3: And like, from years and years, you've been covering this pollution. You've been asking tough questions to all of us, all the people who sit there. To these people who want to innovate now, what would you say? How would you judge them?
7: No, I would say please work very hard, and if you've got some good ideas, please use the QR code and send them to us. Let us restore Delhi's legendary sardi, you know, where you sat in the dhoop and you peeled santre. You know, that's what we want to take Delhi back to.
2: Yeah, and I'm looking forward the most, Anjana, to see some pollution ka solution reels.
3: Absolutely.
2: I want to see how this trend grows, and I want to see what, you know, Gen Z's got to teach us on
3: but
2: this.
3: But this Delhi ka dream really... is the winner.
2: Yeah.
3: मतलब खटिया पे बैठ के चेयर पे बैठ के धूप में संतरे खाओ वो दिन हमें लौटा दो.
7: But you're not going to get that. You're 24/7.
2: Thank you. All right, with that, a huge round of applause again for our esteemed panel and the jury, which will be finally deciding who gets to win that solution for pollution. Thank you so much.
3: Thank you.

So you understood what the campaign is all about. इन्हें जज कौन करेंगे, किस तरह से पूरा प्रोसेस होएगा. लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे द विन इन दिस कैंपेन इज दैट दिस गेट्स अडॉप्शन बाय द गवर्नमेंट. इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर विच डोंट बिलीव अस, बिलीव द पर्सन हु विल बी कमिंग ऑन स्टेज नेक्स्ट टू ब्रिंग यू दैट प्रॉमिस. विद दैट लेट मी इन्वाइट ऑन स्टेज माई कॉलीग अंचना कश्यप एंड द दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता.

0: पोल्यूशन का सोल्यूशन इस महामुहिम में जिसको आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने उठाया है. अब हमारे साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जुड़ गई हैं और ये जेन जी जो यहाँ पर है वो भी चाहता है कि जल्दी से सोल्यूशन हो. लेकिन एक सवाल पूछने से मुख्यमंत्री जी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ. ये बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद ही आ रही है पोल्यूशन पे इंटरव्यू देने दिल्ली में. क्या ऐसा किया है उन्होंने कि कुछ कमाल इस बार होने वाला है, क्या बदलेगा?
1: इंटरव्यू तो मैंने पिछले साल भी दिया था और आपके स्टूडियो में ही दिया था. तब हमारी सरकार 6 महीने पुरानी थी, आज हमारी सरकार 1.5 साल पुरानी है. और इस लगभग 1.5 साल के हमारे टेन्योर में हमने उस हर सॉल्यूशन पे काम किया, हर उस समाधान को हमने आगे ले जाया कि जिसके कारण से जो दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान मिले और विशेष रूप से पॉल्यूशन को. तो हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस, हमारा साइंटिफिक रोड मैप जिसे हमने अडॉप्ट किया वो मेरे कॉन्फिडेंस का कारण है और मैं समझती हूँ कि दिल्ली एक सही दिशा में और सही हाथों में चल रही है.
0: रेखा जी देखिए अब एक एक करके हर बिंदु पर आते हैं. अब व्हीक्यूलर पोल्यूशन मतलब 60%, उसमें भी जो बाइक्स हैं, दो पहिया गाड़ियां हैं उनसे भी 40% पोल्यूशन. ईवी पॉलिसी पर आप जोर दे रही हैं कि ईवी पॉलिसी के जरिए, तो इसमें आपका प्लान क्या है? 3 चीजें इसमें जुड़ती हैं. एक तो ऑड इवन पहले होता था, पता चल रहा है कि 50% वर्क फ्रॉम होम आप मैंडेटरी कर देंगी सरकारी और प्राइवेट जगहों पर, तो गाड़ियां कम होंगी. और तीसरा ये ईवी पॉलिसी ये क्या है और क्या वाकई आप दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल पेट्रोल डीजल कार या दोपहिया वाहन मुक्त करना चाहती हैं, तो कब तक?
1: देखिए आप दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए. ईवी पॉलिसी और दिल्ली को ईवी सिटी बनाना भारत की, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसमें हमने पूरी तरीके से जनता को इन्वॉल्व करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हुए और उसके बाद में हमने पब्लिक डोमेन में भी उस पॉलिसी को रखा, सबके सजेशंस लेते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिसी जिसमें कि हमने ना केवल सब्सिडी की बात की है बल्कि हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स दिए हैं, हमने ईवी इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उसके साथ साथ बैटरीज का रिसाइकिलिंग वहां तक की भी प्लानिंग किया. इस पूरी की पूरी पॉलिसी में हमने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है. वो इसलिए कि इसके बाद जो नए व्हीकल कोई व्यक्ति खरीदे वो ईवी के लिए मोटिवेट हो, उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि आप ईवी खरीदें. इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दिल्ली से पेट्रोल और डीजल के व्हीकल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली में चल रहे हैं, जिनकी अभी लाइफ है, जो पीयूसी के पूरे जो पैरामीटर है उसको फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो अपनी लाइफ पूरी करेंगे और वो दिल्ली में चलेंगे. पर नया व्हीकल कोई खरीदे तो जरूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिल्ली का नागरिक उस व्हीकल को खरीदे, उसमें ईवी को प्रेफर करे. सरकार उसके साथ है और हमारी ईवी पॉलिसी पूरा सपोर्ट करते हुए दिल्ली के हर नागरिक को एक एमिशन फ्री और क्लीन जो मोड ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ओर मूव करना चाहती.
0: क्या ऑड इवन भी आप करेंगे और क्या ये 50% वर्क फ्रॉम होम हर दफ्तर में होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा?
1: अंजना जी, ऑड इवन से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना फायदा मिला इससे पहले कि सरकार की ये नॉन सीरियसनेस थी जो कि ऐसे टेम्परेरी और टाइमिंग कुछ लेकर के आना कि भी ये ऑड इवन कर देंगे, ये खाली भ्रम था लोगों को ये दिखाना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, पर ये सॉल्यूशन नहीं था, कभी भी नहीं था. अगर ऐसा होता तो क्यों लगातार पॉल्यूशन सालों तक बढ़ता रहता? कोई सॉलिड स्टेप जो उठाने चाहिए थे किसी भी सरकार को, वो स्टेप कभी नहीं लिए गए. वर्क फ्रॉम होम इसलिए थोड़ा इफेक्टिव कहा जा सकता है कि आप सड़कों पर थोड़ा तो लोगों को आने से रोकें, वर्क फ्रॉम होम होगा, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मूव करें, लोग उससे उसको इस्तेमाल करें. और सरकार ने, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इसे ये माना है कि ये पूरा साल भर चलाने वाला काम है. पॉल्यूशन जो है कोई एक सीज़न का प्रॉब्लम नहीं है, एक सीज़न की आफत नहीं है कि इस सीज़न में आया आफत है और चलिए 2 महीने निकले तो ख़त्म हुई जान बची, ऐसा नहीं है. साल भर जब सरकारें काम करेगी तभी ये पॉल्यूशन कम होगा. ये 100% हमारी सरकार ने करके दिखाया है. लगातार इस 1.5 साल में हमने उन सभी स्टेप्स को लिया जो आने वाले समय में धीरे धीरे पॉल्यूशन को भी कर्व करेंगे. और 360 डिग्री यानी हर तरफ से हमने पॉल्यूशन को घेरा है, फिर चाहे वो डस्ट मिटिगेशन हो, फिर वो वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, वो प्लांटेशन हो, वो ईवी पॉलिसी हो, हर तरह से हमने कोशिश किया और वो विंटर एक्शन प्लान भी। जब हम पूरी तरीके से ये गाइडलाइन पहले से ही नोटिफाई कर दी हमने कि भाई नवंबर से लेके जनवरी माह तक आपको इन इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि दिल्ली तैयार रहे, सोसाइटी तैयार रहे उन नियमों के अनुसार दिल्ली को चलाने के लिए, और पॉल्यूशन जो है सिर्फ सरकार नहीं लोग भी मिलकर के इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोजेंगे और मिलकर के दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करेंगे।
0: तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, इन जेंजी युवाओं को बताइए कि क्या मिशन है और हम क्या करना चाह रहे हैं इसके जरिए, कैसे इनोवेशन को हम आप प्रमोट करना चाह रहे हैं हम लोग, वो बताएं हमारे दर्शकों को।
1: देखिए, हम सब देश की राजधानी दिल्ली के नागरिक हैं, हर व्यक्ति अपने शहर से बड़ा प्यार करता है और इसीलिए जब कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली की ऐसी ध्यान में आती है तो हमें तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है कि भाई हमारे शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन मुझे लगता है कि एक ऐसी ड्राइव है जहाँ पे पूरी दिल्ली, पूरा देश इस पॉल्यूशन की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने सुझाव दे सकता है, इस ड्राइव का हिस्सा बन सकता है। और हमारी सरकार ने लगातार पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देने के लिए काम किया, हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया। हमने ईवी पॉलिसी लेके आने का काम किया, हमने अभी बहुत बड़ा एक मास प्लांटेशन ड्राइव जो शुरू किया, पहली बार दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का काम, 70 लाख डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग वर्ग, अलग अलग सोसाइटी और यंगस्टर्स ने, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने लिए स्लॉट बुक कराया, पौधे लगाए। और ख़ास करके दिल्ली का जो रिज एरिया है, पहली बार किसी सरकार ने आके उसे फॉरेस्ट नोटिफाई किया, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप सच में फॉरेस्ट को फॉरेस्ट के रूप में जानें और उसको अच्छे से डेवलप करें। तो ये भी काम करना,
0: कंस्ट्रक्शन का काम पर मैं ध्यान लाना, हमारे अनेकों हमारे रिपोर्टर्स गए, स्टिंग ऑपरेशन, ब्लू शीट्स लगी होती है, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वो कौन सी एनफोर्समेंट एजेंसी ये इंश्योर करेगी कि भाई ये ना हो? जब आप ग्रैप फोर लगा देते हैं उसके बाद भी काम चलता रहता है पीछे से,
1: ये सच में आदत थी लोगों की। पर आप लोगों ने अगर स्टिंग किया तो ये भी आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने एक्शन भी पूरा लिया और उस एक्शन के पीछे हमने वो सारे लीकेजेस जिसके कारण से कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट उसका बेनिफिट लेती थी और अपना काम करती थी। मैं ये मानती हूँ कि जिसे अपने शहर की परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है, या जिसे मतलब अपने पड़ोसी की चिंता नहीं है, जो अपने लिए लगातार काम करता जा रहा है, उस पर चेक रखने का काम उतना ही आपका भी है जो एज ए चैनल, और उतना ही जनता का भी है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो गैप था इसे हमने ख़त्म किया है, हमने अपना डस्ट पोर्टल सेकंड शुरू किया है जिसमें 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे हमने डिजिटल कैमराज लगाए हैं जो हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शुरू हुए हैं, जो AI एनेबल्ड हैं, और पूरी तरीके से अगर वहाँ पे डस्ट पैरामीटर पे वो वहाँ पे कुछ भी होता है, अगर अलार्म बजता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास भी आता है, उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ओनर के पास भी जाता है और तुरंत एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती है और एक्शन लिया जाता है। तो ये पहली बार हुआ है कि AI ड्रिवन कैमरास के द्वारा सरकार ये डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही है और पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन को हमने डिजिटल मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स के साथ जोड़ा है, इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था। तो ऐसे हर व्यक्ति जो उस समय कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा या कर रहा होगा वो पूरी तरीके से निगरानी में रहेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा।
0: सरकारी कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, कहीं मेट्रो का काम चल रहा है कहीं पर, अब आजकल तो दिल्ली में जब भी घर से निकलिए कुछ ना कुछ कहीं पर खुदाई हो जाती है, उसका क्या होगा, क्या उसको भी उस दौरान रोक पाएंगे?
1: बिल्कुल, हर नियम बराबर का सरकार पे भी लागू होता है, जनता पे भी लागू होता है। जैसे मैंने ईवी की बात कही, ईवी यदि हम लोगों को प्रपोज कर रहे हैं कि आप लीजिए, तो सरकार ने भी अपने लिए तय किया है कि हम जितने भी व्हीकल फ्यूचर में खरीदेंगे वो 100% ईवी ही खरीदेंगे। यहाँ तक कि हमारी जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स भी है उनको भी हमने ईवी खरीदने का ही
0: प्रेशर है। रेखा जी तो ईवी में चल रही है, पीछे उनके सिक्योरिटी वाले 10-15 गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल डीजल वाली।
1: देखिए मैंने आपको कहा कि हम भविष्य में एक भी नई कार जो खरीदेंगे वो 100% ईवी होगी, तो पुरानी गाड़ियां जैसे हम लोगों की नहीं हटा रहे हैं तो इसलिए सरकार की भी चल रही है, और इसलिए नई गाड़ी जो भी खरीदेंगे वो ईवी खरीदेंगे, जैसे जनता का नियम वैसे हमारा नियम।
0: कृत्रिम बारिश की आपने बात की थी क्लाउड सीडिंग के जरिए, अब वो रोज होता था कि अब सिरसा से जी जा रहे हैं और अब तो विमान उड़ेगा और बारिश होगी और वो बादल कभी बरसे ही नहीं, क्या वजह रही, क्या इज इट अ फेल्ड प्रोजेक्ट, यानी एक ऐसा मिशन जो नहीं हो पाया, या उस मिशन पर अभी भी आप लोग कायम है? और कई विपक्ष ने भी, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि 3 करोड़ खर्च कर दिए बेकार गया।
1: मैं ये मानती हूँ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो फेलियर नहीं होता है, वो आपके लिए एक चीज़ सिखा के जाता है। आज दिल्ली शहर के लिए उसके पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, आज आप भी तो पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ बैठे हुए जितने यंगस्टर्स हैं जो भी सॉल्यूशन हमें बताते हैं और हमें लगता है कि इस सॉल्यूशन से सच में 2%, 10% कुछ भी पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो हम तो उसे तैयार हैं अपनाने के लिए। ऐसे ही कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन जब बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड है, जिसको कि आप बाकी देशों में भी इसको किया गया है और लोगों ने आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से बहुत सारे सॉल्यूशन किए हैं, दिल्ली में भी हमने इसे ट्राई किया, तो मुझे लगता है कि ट्राई करना कोई गलती नहीं है। हमने पूरी अपनी उस मानसिकता के साथ कि पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देना है, हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया और एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है।
0: चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कई बार ऐसा मन में आता है कि भाई कोई भी एफर्ट कर लो छोटा होगा थोड़ा थोड़ा होगा, पर ऐसा कुछ इनोवेशन या कुछ भी आपके सामने अभी तक आया है जो कि अनूठा है, जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा हो?
1: बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने जो इनोवेशन चैलेंज किया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर, IITs में जाकर के, और बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपने स्टार्टअप्स दिखाए, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए कि इसके माध्यम से पॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है, और उसमें से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाए, उसे दिल्ली शहर में इम्प्लीमेंट किया, और मुझे लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट अपनी वर्किंग का कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर छोड़ता है, तो हम लगातार उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, लगातार उस हर संभव प्रयास पे काम कर रहे हैं कि दिल्ली शहर की आबो हवा अच्छी हो, दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल खुश हो, इसके लिए हर उस सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है जो कि सरकार के सामने प्रेजेंट होता है, जो नए स्टार्टअप्स हमें दिखाई देते हैं। और इतना कह सकती हूँ कि ये दिल्ली शहर देश की राजधानी है, जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारी इस दिल्ली शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम जिसमें केवल दिल्ली का हिस्सा नहीं है, दिल्ली NCR भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम दिल्ली के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम NCR के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम हर तरीके से इसके समाधान को खोज रहे हैं, और दिल्ली की जनता लगातार उसका प्रभाव देख रही है और भी देखेगी।
0: आपने दिल्ली की बात किया, आपने खुद ही कहा दिल्ली NCR, तो एक आखिरी सवाल मन में आ गया है जो कि बहुत जरूरी है शायद एड्रेस होना, क्योंकि पराली एक बड़ी वजह और उसका जिस तरह से असर आता है वो हम सब भुगतते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है, कई लोग इनहेलर्स पे चले गए हैं, कई लोगों की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, किस किस से बात हो रही है आपकी आज सही सही बता दीजिए। भगवंत मान जी से आपने बात की है कि क्या करना है, आपने नायब सिंह सैनी साहब से बात की है क्या करना है, राजस्थान में आपने शर्मा जी से बात की है क्या करना है, इधर योगी जी से बात की है क्या करना है,
1: हर एक मुख्यमंत्री से बात की है, और ओपन बर्निंग का कोई भी मोड हो, पराली हो, बाकी चीजें हो, दिल्ली में हो, NCR में हो, बाकी राज्यों में हो, वो हर एक चीज जो हमें इफेक्ट कर रही है वो ठीक होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हमने सबको इस समस्या के समाधान पे काम करने के लिए कहा है, नॉर्दर्न रीजन का जो मीटिंग पीछे हुआ था उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, हम सब ने मिलकर के एक कॉमन एजेंडा बनाया है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जिस पे हर राज्य काम कर रहा है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी को एज इट इज़ हरियाणा ने अडॉप्ट किया है, तो हरियाणा भी अब ईवी पे जा रहा है, धीरे धीरे यूपी, राजस्थान, बाकी राज्य भी जाएंगे, पूरा देश इस ईवी पॉलिसी पे काम करेगा और हम सब अपनी आबोहवा बदल पाएंगे।
0: पंजाब का आपने नाम नहीं लिया, पराली पर क्या बात हुई है?
1: पंजाब की पराली भी खत्म होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और जरूर जो उनके ऊपर मोहपाश है उसमें से निकल के इस सीरियस नोट पे आएंगे।
0: वो तो सैनी जी भी करने से डरते हैं क्योंकि सबको लगता है कि किसानों की नाराजगी कौन मोल ले ले।
1: बिल्कुल
0: सैनी
1: बिल्कुल
0: तो नहीं है बीजेपी के।
1: हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्लांट बने हैं जो क्लीन फ्यूल पे जनरेट कर रहे हैं पराली से, और लगातार हरियाणा में, यूपी में, इवन पंजाब में भी कुछ ऐसे प्लांट खुले हैं, और मुझे लगता है कि उन सबका असर दिल्ली पे होने वाला है। दिल्ली के लिए इतना कह सकती हूँ कि ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, तो हम दिए जलाते रहेंगे और लोगों को रोशन करते रहेंगे।
0: रेखा गुप्ता जी, आप काफी अच्छी शायरी करती हैं मुझे पता है, बीच बीच में आप पहले से, लेकिन राजनीति की सख्ती कई बार इंसान को अलग बना देती है। उम्मीद है कि ये जो कोशिश है पोल्यूशन का सोल्यूशन वो सफल होगा, और अब QR कोड जो है हमारा है उसको लॉन्च करेंगे हम लोग।
2: I request now to the jury also to join us on stage. Our esteemed jury, huge round of applause, please. So much talk, so much inspiration, and then all of it will start with this one QR code. And to unveil that, I'll request the Chief Minister to just be there. And there you go, Delhi, with bated breath. There you go.
0: Big round of applause.
2: That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. All you have to do is just scan that QR code, send us your pitch, and our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that. With that, we are calling this entire campaign open. Thank you.

0: सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हथकंडे का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अगर हम लोग रोड पे अपने आंदोलन पे भी अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप कौन सा सम्मान देने का बात करते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, पहले तो उस लड़का को मेरे सामने लाया जाए, जो भी 2-3 लड़के थे मैं उसे पहचानती हूँ, मैं उन्हें चिन्हित करूंगी और आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, वरना मैं आज एफआईआर करने जाऊंगी।
1: The aggrieved protesters had assembled to burn effigies of Chief Minister Hemant Soren and Rahul Gandhi. The aggression, however, was visible. JMM leaders were spotted with hockey sticks and baseball bats, threatening the protesting students of a befitting reply.
2: आज जो है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कोचिंग सेंटर में जो स्टूडेंट नाम पर लोग आ रहा है उस लोग को हिसाब किताब करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं।
3: तो ये बेस बल्ला भाजपा के लिए
2: भी अगर कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री एक भी अगर भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट अगर यहाँ आ गया तो मैं आपको बताऊँ यहाँ से जा नहीं पाएगा, उसका भी हिसाब किताब हम लोग करेंगे।
1: The unrest comes just after the Jharkhand High Court state government orders cancelling several recruitment exams, a decision the Soren government had taken to pacify a 26-day protest. Protesters now accuse the Soren government of failing to mount a robust legal defence of its own cancellation orders, effectively reopening a crisis many believed had been settled. Members of the JPSC-JSSC Reforms Manch marched to the Jharkhand Public Service Commission office and scuffled with police.
4: छात्र बहुत ही कम संख्या में थे, उसमें ज्यादा विद्यार्थी परिषद के नेता, कोचिंग संचालक, उनके लोग और भाजपा के लोग। ठीक है, पुतला दहन तक ठीक है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए, क्या आदिवासी होना गुनाह है?
1: The episode had also triggered a political slugfest, with the BJP accusing Rahul Gandhi of hypocrisy on student issues and the JMM alleging the BJP is exploiting the protests for political gain.
5: Rahul Gandhi Kerala gaye? Kya Rahul Gandhi Punjab gaye? To aapne jantar mantar mein ek vibhajit vipaksh dekha. क्योंकि जंतर मंतर अगर केवल और केवल छात्रों का जमावड़ा होता तो राहुल गांधी वहां निश्चित जाते। राहुल गांधी क्यों नहीं गए वहां? क्योंकि उन्होंने वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देखा।
1: लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबूलाल मरांडी क्लेम्ड जेएमएम गूंस ब्रूटली थ्रैश्ड द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स।
6: इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई कर रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ते थे और बच्चों को पीटा भी है। गिरिडीह तो सुनते बच्चे हॉस्पिटलाइज भी है, आईसीयू में, आप सोच सकते हैं।
1: With the high court battle still raging and no resolution in sight, Jharkhand's exam row is fast turning into the state's most volatile flashpoint. Bureau Report, India Today.
7: Sugar prices are surging with a 15% jump in just 1 month, putting fresh pressure on household budgets ahead of the festive season. But is ethanol really driving up the spike? The government says no. So what's behind the sugar shock? And will prices cool before the festive rush?

देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और यह ऐतिहासिक निर्णय है।

0: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है।
1: Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied. Not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.

0: आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद सीडब्ल्यूसी में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमिटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे।
1: लेट मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर मोदी गो टू नागपुर एंड टेल मोहन भागवत जी, सर प्लीज ड्रॉप सदा वत्सले the RSS song from henceforth and ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakas with your hands folded to the tricolor. Aisa naman kijiye Rashtriya Dhwaj ko aur Vande Mataram ga lijiye. Then I will tell that you are actually heading towards patriotism. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last 2 stanzas. I will only resign them.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद सीडब्ल्यूसी में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमिटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे।
1: लेट मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर मोदी गो टू नागपुर एंड टेल मोहन भागवत जी, सर प्लीज ड्रॉप सदा वत्सले the RSS song from henceforth and ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakas with your hands folded to the tricolor. Aisa naman kijiye Rashtriya Dhwaj ko aur Vande Mataram galijiye. Then I will tell that you are actually heading towards patriotism. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last 2 stanzas. I will only resign them.

0: इसके टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकती। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद सीडब्ल्यूसी में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमिटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे।
1: लेट मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर मोदी गो टू नागपुर एंड टेल मोहन भागवत जी, सर प्लीज ड्रॉप सदा वत्सले the RSS song from henceforth and ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakhas with your hands folded to the tricolor. Aisa naman kijiye Rashtriya Dhwaj ko aur Vande Mataram ga lijiye. Then I will tell that you are actually heading towards patriotism. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last 2 stanzas. I will only resign them.